0: listening to Avineet.
1: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal. Jabki aaj hai 10 tarikh July, Friday. Aise mein public holiday hai, toh main aapka saath dene ke liye bilkul hazir ho chuka hoon aapke favorite dial hum par aur lekar aaya hoon dheru sara information aur entertainment khas aapke liye. Jabki long weekend ki shuruaat hai, toh aise mein let's start with a bang. Aur jabki matariki ki holiday hai, toh aise mein aapko malum hoga ki matariki yani ki ek aisa mauka jahan par Maori cosmology mein jahan पर द गॉड ऑफ विंड एंड वेदर और इसको लेकर का मनाया जाता है और मातारिकी को अगर जो कहें तो ये नाइन स्टार्स का जो क्लस्टर है तो तारों की बात करते हैं सितारों की बात करेंगे और ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा बस आपको क्या करना है आप हमारा साथ देते रहें कहां पर 104.2 एफएम साथ में रोवा पर मैं हूं अवि आपका ढेर सारा स्वागत करता हूं प्यार के साथ में और लेकर आया हूं आपके लिए बेहतरीन नगमे ये सभी कुछ पेश करता रहूंगा बारी बारी से लेट्स स्टार्ट द शो

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और जबकि लॉन्ग वीकेंड का माहौल है तो ऐसे में आज का जो वेदर है आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर अगर जो आप ओकलैंड में हैं तो फोकास्ट किया गया है कि वेदर आज का फाइन रहेगा और कुछ कुछ जगहों पर सदलीज की दिशाओं में हवाएं बहेंगी। इसके साथ में जो सनसेट है आज का 5:20 PM के आसपास रहेगा। हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर आज का करीब 14 डिग्रीज तक रहेगा और मिनिमम ओवरनाइट एट 4 डिग्रीज। तो ये सभी कुछ सुनने के बाद में आप अपना प्लेन से जो बना सकते हैं या फिर बना ही लिया है, बाबकी हो रही है या फिर गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आ रहे हैं, ऐसे में आप बिल्कुल बिजी है, लेकिन हमारा साथ मत छोड़िएगा, साथ देते रहिएगा 104.2 FM साथ में रोवा पर।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Māori Ma, have you received a reminder email or text about your role for this year's election or not sure you're enrolled? Luckily, we still have time. If you're Māori and 18 or over, you get to choose Māori role or general role. There's no right or wrong, just right for you. The role you choose affects who you can vote for to represent you and your roe in Parliament. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
5: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
6: Shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals on now. Cozy electric blankets, flannel sheets, thick warm duvets. Don't miss 20 to 70% off the entire store. With all stores open till 9 tonight at Briscoe's. See you online for T's and C's.
7: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. Squirrel.co.nz.
8: At Bunnings, we can make your paint projects easy. With a Hayden 3-piece 230mm roller kit, only $11.74. Or Sally's 1-litre sugar soap, just $5.90. Bunnings makes DIY easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
9: Freedom's Spend More, Save More sale is on now. Spend $500, save 15%. Spend $1,500, save 20%. Spend $2,500, save 25%. The more you spend, the more you save. Only at Freedom.
10: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
11: कभी भी कहीं भी।
12: वन जीरो 4.2 FM साथ में रोवा पर मैं हूं आपका साथी अभी, जबकि मतर की सेलिब्रेशंस का पब्लिक हॉलीडे है, तो ऐसे में 10th of July आपको कैसे भूल सकते हैं अगर जो आज आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हां, 10th of July लॉन्ग वीकेंड है, तो ऐसे में धमाकेदार बर्थडे सेलिब्रेट आप कर रहे हैं तो आपको हमारी ओर से वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और पूरी हम की टीम की ओर से आपका जो स्पेशल दिन है आप अच्छी तरह से इसे सेलिब्रेट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और आपके बारे में आपको बता दे कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसी है, तो आपके बारे में ये बताया जाता है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हो, साथ में एक मैग्नेटिक प्रेजेंस आप होल्ड करते हो। इसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी जाते हो और जाने के बाद में आप लोगों को एकदम से अपनी ओर खींच लेते हो मैग्नेट की तरह। और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ्स में आपके बताया गया है कि आप बिल्कुल डिवोटेड हो, लॉयल हो, और जितने लोगों के बारे में आप केयर करते हो फियर्सली प्रोटेक्टिव भी आप हो उनके बारे में। तो ये सभी कुछ आज जब आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके स्पेशल दिन पर ऑन योर बर्थडे 10th of July आपके बारे में थोड़ा सा आपको आपके ट्रेड्स के बारे में बता रहे थे। आज का दिन बिल्कुल बढ़िया रहा आपके लिए, और साथ ही साथ में ढेर सारा मैसेजेस आए, प्यार का उपहार आए, और आज का दिन आपके लिए स्पेशल रहे। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे मैं अभी मेरी ओर से, साथ में पूरी हम की टीम की ओर से।

0: by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: हम पर हमारे काइंड स्पॉन्सर्स की ओर से आपको वर्ल्ड कप सोका के बारे में भी बता दें, जबकि क्वार्टर फाइनल्स का लेग आज सुबह सुबह शुरू हो गया है। एंड व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को, जो 8 पर खेला गया और इसका रिजल्ट तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन कल सुबह भी 7 पर स्पेन और बेल्जियम के बीच में खेल रहेगा। उसके साथ साथ संडे को नॉर्वे टेक्स ऑन इंग्लैंड एट 9 इन द मॉर्निंग। इसके साथ साथ संडे को जो आखिरी क्वार्टर फाइनल है, ये अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में दिन में 1 बजे रहेगा। तो आप भी अपने अपने टीमों को चीयर कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे आपकी टीम को।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट
4: Skiji. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, Skiji. Check out fijiairways.com/skiji.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे
6: चूड़ी कंगन पायल बाली झुमके और चोकर ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं समझे
5: सोना संसार पापा टोटो जहां था वहां अभी भी है शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो
7: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो सोना संसार यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold.
8: At Bunnings Trade, we've got your paint jobs covered. Shop a wide range of paint and accessories from leading brands like PPG, Dulux and Monarch. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
9: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
10: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
9: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
10: Mashallah, bahut acha, very nice.
11: MediaWorks complaints. How can I help?
12: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
11: Thank you.
12: It's all I can think about.
11: What does it sound like?
12: Yeah, I'd rather not.
11: Go on, why don't you have a crack?
12: Okay, got a plumbing problem.

0: recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it, and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, All Together Auckland.
1: Zabardast hits.
2: Shuru ho jaye to rukte nahi.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Hum. On the airwaves of Hum, main hu aapka saathi Avi, aapka saath de raha hu 6 tak. साथ निभाने का पूरा पूरा वादा करते हैं और इसके साथ आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ में जुड़ा रहना है रोवा ऐप के द्वारा या फिर आप रेडियो पर हमें सुन रहे हैं, ऐसा ही सुनते रहिए। इसके साथ साथ फेसबुक पेज पर हम 104.2 एफएम का जो फेसबुक पेज है इसे भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो है हम डालते ही रहते हैं।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: IKEA sale is on now.
3: And looking around Tamaki Makaurau for this afternoon, and we are seeing some very heavy traffic at the moment on the southern motorway. If you are leaving the city on the southern and your southbound, it's 58 minutes towards Bombay. If you're heading into the city from Bombay though, it's only 42 minutes. Westgate into the city is 24, from Silverdale to the city is 34, and out to the airport is just 25.
2: Get up to 70% off selected products at IKEA.co.nz today.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
8: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish, because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
9: Grab a hot deal for less with Mitre 10. Refresh your space with 4 litres of selected Accent interior paint, now $79. And cozy up your home with 20% off Goldia panel heaters. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
10: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
11: हाँ, अच्छा
10: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
11: Mrs. Singh.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
6: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: You're listening to Avineet.
1: It's just after 1 p.m. on Hum, और मैं हूँ अवि आपका साथ, और इसी तरह से इस हवा पर भी आपका खास स्वागत करता हूँ, वेदर आप 104.2 FM पर सुन रहे हैं या फिर रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. वेलकम टू द शो, और यहाँ से लेकर 6 तक कारवा हमारा चलता रहेगा.

0: Playing Bollywood's biggest hits. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: Moisture और ventilation का problem लगता है।
5: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Make long weekend lie-ins longer with Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds with 55% off the Sublime Serenity Breeze. Queen size, now from 1687. Find your best sleep in our long weekend sale at Beds R Us Medicao and Pukekohe, where dreams begin.
8: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity, eligibility, lending rules, terms and fees apply.

0: the long weekend. Time to kick back, relax, reflect, and think of something good to do together. Something that'll really bond you. Something selfless that'll give life just a little more purpose. Something like getting a group of blood buddies together to give blood or plasma. This winter, with all the dreaded loogies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
1: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Hum, playing Bollywood's biggest hits.
2: हम पर मैं अभी आपका कंपनी कर रहा हूं और जैसा कि हमने कहा था कि आपको मतर की पब्लिक हॉलिडे के बारे में बताएंगे, कुछ कल्चरली आपको अवेयर करेंगे. तो जो तेका हुई हो मतर की पब्लिक हॉलिडे एक्ट है, ये इफेक्ट में आया था अप्रैल के महीने में इन द ईयर 2022. जी हां, पहली बार जब ये पब्लिक हॉलिडे इफेक्ट में आया था, इट वॉज़ इन द ईयर 2022. अब जबकि चौथा साल है इस हॉलिडे को हम मना रहे हैं. और आपको ये भी बताते चले कि मतर की का जो मतलब है, इसका क्या है. मतरिकी का मतलब है लिटिल आइज या फिर स्मॉल आइज, जैसा कि इसको माओरी में इंटरप्रेट किया जाता है. और मतरिकी कौन है, इसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि मतरिकी एक एंटायर क्लस्टर, जो कॉस्मिक क्लस्टर है, इसको कहा गया है. और माओरी में इसको बिलीव किया जाता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल स्टार है जो अन्य 8 विजिबल स्टार्स की माँ है. तो इसीलिए इसका नाम मतरिकी है. और इसका जो सिग्निफिकेंस एक और है कि इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू आवर हेल्थ एंड वेलबींग. तो ऐसे में आज का जो पब्लिक हॉलीडे है, ये हेल्थ और वेलबींग के साथ में भी जुड़ा है. तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचिएगा कि कैसे मतरिकी को सेलिब्रेट किया जाता है और कैसे हम अपने हेल्थ और वेलबींग को भी ध्यान में रख सकते हैं.

हम पर मैं अभी आपके साथ साथ चल रहा हूँ, और जबकि बातें हो रही थी मतरिकी के बारे में, तो काफ़ी जगहों पर सेलिब्रेशन से जहाँ पर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्काई सिटी प्लाजा में ओकलैंड में यहाँ पर मतरिकी नाइट मार्केट्स है, और इसमें आप जाकर घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आज 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक ये जो नाइट मार्केट्स है ये रहेंगी स्काई सिटी प्लाजा में, और आप यहाँ पर जाकर घूम फिर सकते हैं आज और साथ में कल 4 PM से लेकर 10 PM तक स्काई सिटी प्लाजा आप जा सकते हैं टू सेलिब्रेट मतरिकी एंड बाय अटेंडिंग मतरिकी नाइट मार्केट्स। इसके साथ साथ में अगर जो आप पीहा के इलाके में हैं, तो आपको बता दें कि साउथ पीहा बीच में आज 11 बजे सुबह से ये शुरू हो गई थी, और 3 बजे तक यहाँ पर आप जाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। जाइंट काइट्स यहाँ पर उड़ाए जाएंगे, इसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। याद रहे साउथ पीहा बीच में 149 मरीन परेड नॉर्थ पीहा, यहाँ पर आप जाकर 3 बजे तक ये जो प्रोग्राम है चलता रहेगा, यहाँ पर जाइंट काइट्स आप जाकर विटनेस कर सकते हैं और इनको आसमानों में लहराते हुए देख सकते हैं।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Accurate traffic.
3: Would you trade in your house?
4: And looking around Tamaki Makaurau for this afternoon, and we are seeing some very heavy traffic at the moment on the southern motorway. If you are leaving the city on the southern and your southbound, it's 58 minutes towards Bombay. If you're heading into the city from Bombay though, it's only 42 minutes. Westgate into the city is 24, from Silverdale to the city is 34, and out to the airport is just 25.
3: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information.
0: Big savings in store is long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants, and save on Wattle ID Advanced Interior 10 litre. July 9th, say 12th tak. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson mein.
5: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
6: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland.
1: Zabardast hits.
7: Shuru ho jaye to rukte nahi.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
8: Hum.
9: जबकि हम आपका फेवरेट बॉलीवुड डाल है, तो ऐसे में आपको बॉलीवुड की दुनिया का भी सैर करा देते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आज से आप अपने सिनेमाज में धमाल फो को जाकर देख सकते हैं। पूरी की स्टार कास्ट, जिसे हेडलाइन कर रहे हैं अजय देवगन, साथ में एंटरटेनमेंट की दुकान रितेश देशमुख, साथ में अरशद वारसी और संजय मिश्रा जैसे कलाकार। एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसे आपने बहुत पसंद किया है और आपको एंटरटेन भी किया है, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास में कि धमाल फो भी आप चेकआउट कर सकते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर हमारे स्टूडियोज में 2:02 हो रहे हैं. वेलकम टू दिस आवर एज वेल. मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं और 6 तक आपका साथ देता रहूंगा.

हम पर कुछ ना कुछ आपको कम्युनिटी न्यूज से बताते रहते हैं ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहे कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है. तो सबसे पहला पहल, न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन ये आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd and 23rd August को एट बेकनहेड स्काउट्स होल. याद रहे तारीख 22nd और साथ में 23rd August को बेकनहेड स्काउट्स होल आपको जाना है. और यहाँ पर आपको इनकरेज किया जाता है कि आपका स्किल लेवल कैरम को लेकर, उस गेम को लेकर कोई भी लेवल पर हो आपकी स्किल्स, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है. और रजिस्ट्रेशन साथ में और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का जो फेसबुक पेज है, या फिर आप प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 02109085067 पर 02109085067 पर कॉल कर सकते हैं.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: What if your next holiday wasn't just a holiday,
3: but the adventure everyone talks about?
2: Imagine chasing waterfalls,
3: wandering lush rice terraces,
2: catching unforgettable sunsets,
3: and relaxing at iconic beach clubs.
2: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
3: discovering incredible temples,
2: tasting world-famous street food.
3: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
8: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
9: Sorry about that.
8: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
9: Kogan Mobile. True Aussie value.
8: Terms and conditions apply.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
11: हम पर ये कारवा चल रहा है, मैं हूं अभी आपके साथ में। कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी गुड प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम तो होती है लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ अच्छी एक न्यूज़ होती है। तो ऐसा ही कुछ एक गुड प्रॉब्लम है जो टोयोटा न्यूजीलैंड फेस कर रही है। एक रिपोर्ट की माने तो टोयोटा ने ये बताया है कि जो उनकी हाइब्रिड रेफो गाड़ी है, इनके पीछे इतनी डिमांड है और डिमांड यहाँ तक बढ़ गया है कि अगर जो आज आप ऑर्डर करोगे एक हाइब्रिड रेफो, तो इसका जो डिलीवरी है आपको 2027 में जाकर मिल सकेगा। यानी कि द डिमांड इज़ स्काई रॉकेटिंग और इसीलिए इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव फॉर टोयोटा कि यहाँ पर लोग इतना पसंद करते हैं इस गाड़ी को कि इसकी डिलीवरी की लाइन लगी हुई है और द एलियस्ट डिलीवरी आपको मिल सकती है इज़ इन 2027। तो बात कर रहे हैं गुड प्रॉब्लम की, तो टोयोटा के लिए ये एक गुड प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसी समस्या जो इनके लिए एक खुशखबरी भी लेकर आ रही है।

ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम, मैं हूं अभी आपके साथ में। अगर जो आप सोच रहे हैं कुछ अच्छे नेक कार्य में हाथ बटाने के लिए, तो ये जो कम्युनिटी न्यूज है खास आपके लिए। इन एड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट थिरुकुट्टू नाइट, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं ओकलैंड यूनाइटेड थिरुकुट्टू ग्रुप, और ये आज रात को ही 7:30 PM रहेगी एट वैदिक सेंटर पापाटोय, जहां पर एंट्री फी है सिर्फ $10 और यहां पर कावा, स्नैक्स एंड हॉट फ्राइज विल बी ऑन सेल। और जानकारी के लिए आप जीत को 02105447 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे 02105447 पर आप इसे कॉल कर सकते हैं। तो एक मेडिकल ट्रीटमेंट की एड में यहाँ पर थिरुकुट्टू नाइट लेकर आ रहे हैं ओकलैंड यूनाइटेड थिरुकुट्टू ग्रुप, जो आज रात ही को वैदिक सेंटर पापाटोय में 7:30 PM से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप जाकर अपना सहयोग जो है दे सकते हैं।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: With the kind compliments of our sponsors, आप तक हम जो World Cup Soccer की अपडेट से लेकर आते रहे हैं और लेकर आते रहेंगे जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है. आपको मालूम होगा संडे मॉर्निंग एक बहुत ही अच्छा शानदार मैच होने जा रहा है नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में. ये सुबह 9 बजे पर रहेगी. ये जो क्वार्टर फाइनल का मैच है एक बहुत ही एक्साइटिंग इनकाउंटर होने वाला है. नॉर्वे का जो स्ट्राइकर है एलिंग हालैंड, ये अपना जो फुटबॉल है क्लब के लिए इंग्लैंड में ही खेलते हैं, तो ही नोज हाउ द इंग्लिश प्लेयर्स प्ले, साथ में इंग्लिश टीम कैसे खेलती है. तो ये सभी कुछ देखने वाली बात रहेगी कि एलिंग हालैंड अपना जो एक्सपर्टीज है कैसे इस्तेमाल करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ. लेकिन इन द मीन टाइम जो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टार्मर ने ये बताया है, ऐसा हिंट किया है कि अगर जो इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर एक पब्लिक हॉलीडे हो. तो ये सभी कुछ देखने वाली बात रहेगी. लेकिन अभी से ही सर कीर स्टार्मर ने इंडिकेट किया है कि शायद इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीतने पर एक पब्लिक हॉलीडे का ऐलान किया जाए. Let's wait and watch कि आगे क्या होता है.
2: The beat of Bollywood.
3: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: You're listening to Avineet.
1: पर वी आर हाफ वे थ्रू द शो, जबकि छह तक हमारा और आपका साथ रहेगा. ऐसे में इस आवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं 104.2 FM और साथ में रोवा ऐप पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. वेलकम टू द शो. जबकि आज है 10th of July, माता रिकी का पब्लिक हॉलीडे, साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा टिल 6. अभी का इस आवा पर भी ढेरों सारा प्यार.

एक और कम्युनिटी न्यूज में श्री राम मंदिर जो कि सिचुएटेड है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, ये आयोजन करने जा रहे हैं अखंड रामायण पाठ की, जो रहेगी पहली तारीख अगस्त को और साथ में दूसरी तारीख अगस्त को, यानी कि फर्स्ट एंड द सेकेंड ऑफ अगस्त को ये जो अखंड रामायण पाठ है ये शुरू होगी। और यहाँ पर सरडे का जो प्रोग्राम है 7 AM इन द मॉर्निंग, यहाँ पर रोड पूजा रहेगी, साथ में कोटा पास 8 पर आरती, इसके बाद में रामायण पाठ आरंभ होगी। साथ में ये चलती रहेगी संडे को 10 बजे सुबह तक, यहाँ पर उसके बाद में हवन और आरती रहेगी, साथ ही साथ में महाप्रसाद आपको डेली सेव किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर जो आपके पास में भी कोई मंडली है और आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो 09836-4647 पर आप कॉल कर सकते हैं। याद रहे श्री राम मंदिर एट 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, यहाँ पर अखंड रामायण पाठ होने जा रही है ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ अगस्त।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
2: Ski G. Yeah, it's a real word now. Verb, to stop in Fiji before you hit the slopes. Because why fly straight to the snow when your island paradise is on the way? Land in paradise, soak up the sun, and then go shred Japan. Or hit the slopes in Vancouver. Rather unwind a pre-ski, relax and recover in Fiji on your way back home. This winter, don't just ski, Ski G. Check out fijiairways.com/SkiG.
3: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो.
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड. एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रेमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी. कॉल 24/7 ऑन 09278860.
8: जबरदस्त हिट्स
9: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं.
8: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
10: हम आप सुन रहे हैं हम और हम पर मैं हूं आपका साथी अवि. अक्सर आपके लिए बॉलीवुड की दुनिया से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी लेकर आते रहते हैं. अब की बार आपके लिए लेकर आए हैं एक म्यूजिकल ट्रिविया. आप 1990s के गानों को बेहद पसंद करते हैं, उस ईरा की म्यूजिक को पसंद करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन खास आपके लिए. उस ईरा में, उस 1990s के दौर में एक म्यूजिकल जोड़ी थी जिनका नाम था दिलीप सेन और समीर सेन. इन्होंने साथ मिलकर काफ़ी हिट नगमों को कंपोज किया है. जैसे ये दिल लगी फिल्म में सैफ अली खान पर वो जो गाना है ओले ओले, ये इन्होंने ही बनाया था. इसके साथ में इन्होंने अक्षय कुमार के लिए अफलातून में काफ़ी हिट नगमों को कंपोज किया. साथ ही साथ में सनी डियोल के लिए फिल्म जिद्दी और सलाखें जैसी फिल्मों में इन्होंने काफ़ी हिट म्यूजिक भी दिया. ये आपको जानकर ऐसा लगेगा जब आप इनका नाम सुनेंगे, दिलीप सेन और समीर सेन, आपको लगेगा ये दोनों भाइयों की म्यूजिकल जोड़ी है. लेकिन एक्चुअली ये जो दिलीप सेन है ये समीर सेन के चाचा है. यानी कि जो जोड़ी है ये चाचा दिलीप सेन और भतीजे समीर सेन ने मिलकर बनाई है. इनका जो नाता है, रिश्ता है, ये चाचा भतीजे का है, जहां पर दिलीप सेन चाचा है और समीर सेन इनके भतीजा.

हमारा ये जो स्टेशन है बिल्कुल आपके साथ में कनेक्टेड है, इसीलिए आपके लिए कम्युनिटी न्यूज लेकर आते रहते हैं ताकि आपको पता रहे आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला ऑन द 8th of August 2026, और इसके बारे में जो और डिटेल्स है ये जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये डेट, ये तारीख आप मार्क कर लीजिए, 8th of August 2026। और अगर जो आपको स्टॉल इंक्वायरीज करनी है तो आप मास्टर अशोक को 0211795459 पर कॉल कर सकते हैं। याद रहे 0211795459 पर आप मास्टर अशोक को कॉल करके स्टॉल की इंक्वायरीज कर सकते हैं।

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: हम एक्यूरेट ट्रैफिक।
4: ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स एट एलॉय व्हील रिपेयर।
5: And traffic clearing on the southern motorway if you're southbound. It should be a clear run at the moment. If you are heading into Auckland northbound Bombay to the city, is 54 minutes at the Mo. There is a bit of traffic on the Norwestern around Arch Hill Reserve, 26 minutes from Westgate into the city, and from the city to the airport, 24.
6: Curbed your wheel? Restore it to factory finish today. Search Alloy Wheel Repair.
7: Shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals on now. Cozy electric blankets, flannel sheets, thick warm duvets. Don't miss 20 to 70% off the entire store with all stores open till 9 tonight at Briscoe's. See online for T's and C's.
8: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
9: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
10: No way.
11: We in trouble?
9: Nah, it's BP Plus.
10: What is that?
9: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
12: Sweet! Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
13: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना था।
14: The madness is back. Dhamal 4.
15: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
14: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
16: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
14: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
17: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
3: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
0: कभी भी कहीं भी
3: मस्त मलंग
18: मैं अभी आपका कंपनी कर रहा हूँ ओनली ऑन हम 104.2 एफएम साथ में रोवा ऐप पर। और जबकि लॉन्ग वीकेंड है ऐसे में स्पोर्ट्स का जो एंटरटेनमेंट है बिल्कुल पूरे पैमाने पर जारी है क्योंकि नेशंस चैंपियनशिप रग्बी है ये भी चल रहा है। और कल आप न्यूजीलैंड को यानी कि ऑल ब्लैक्स को देख सकते हैं प्लेइंग इटली एट 5:10 PM कल शाम को। और ये जो गेम है ये स्काई स्टेडियम वेलिंगटन में रहेगा। इसके अलावा वॉलबीज़ और फ्रांस के बीच में 7:40 PM कल रात को ब्रिस्बन स्टेडियम में एक और एक मैच रहेगा। इसके अलावा जापान और आयरलैंड के बीच में खेल रहेगा। और अगर जो आप इंटरेस्टेड है फिजी के मैच के बारे में जानने के लिए तो संडे मॉर्निंग तड़के सुबह 1:10 AM पर फिजी और इंग्लैंड के बीच में खेल रहेगा इन इंग्लैंड लिवरपूल। तो यहाँ पर जो गेम्स है ऐसे ऐसे बारी बारी से खेले जाएंगे आप इसे फॉलो कर सकते हैं। साथ में खासकर जो खेल न्यूजीलैंड समय अनुसार इंटरेस्टिंग मैच रहेगा 5:10 PM कल शाम को ऑल ब्लैक्स एंड इटली के बीच में इसे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर जो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिजी के मैच के बारे में तो एक बार फिर से आपको बता दें संडे मॉर्निंग 1:10 AM फिजी प्लेज इंग्लैंड।

हम पर बस 4 बजने वाले हैं और 4 पर आपके लिए समाचार भी रहेगा। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा और साथ मिलकर इस सफर को तय करेंगे।

0: to Avineet.
1: समझ से बाहर दिल की दुनिया होती है और दिल की दुनिया सजाकर मैं हूं अभी आपके साथ में ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ऑन 104.2 FM साथ में रोवा ऐप पर।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और इस बार के लिए आपको बताने जा रहा हूँ आपको एक फायदे की बात। इस सैटरडे को यानी कि कल जो ड्रॉ होने वाला है पावरबॉल $25 million का जो प्राइज इनाम है, अगर जो अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि हु नोज कि जो डेस्टिनी है, तकदीर है, कब पलट दे। तो इसके लिए आपको अपने टिकट्स लेने हैं। आपको सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि यू आर इन इट टू विन इट, ऐसा ही कहते हैं ना।

You're listening to Hum, playing Bollywood's biggest hits, और मैं हूँ आपका साथी अवि. अब बातें करते हैं कुछ हंसने हंसाने की, क्योंकि ट्राई विजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहां पर आप कृष्णा अभिषेक साथ में राजीव ठाकुर को लाइव ऑन स्टेज देख सकेंगे. अभी तक आपने इन दोनों कलाकारों को ऑन स्क्रीन देखा है, अब एक सुनहरा मौका जहां आप 18 जुलाई को इन दोनों कॉमेडियंस को देख सकेंगे एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर क्रिएटिंग मैजिक. टिकट्स के लिए आप bookmyevent.co.nz पर जाइए. इसके अलावा आपको एक मौका देंगे वीकडेज मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 6 PM, जहां पर हमारे आरजेज आपको एक चांस देंगे कि आप डबल पास जीत सकेंगे. कैसे? आपको सिर्फ कॉल करके जब भी आपको मौका दिया जाता है, एक साफ सुथरा, याद रहे साफ सुथरा एयर फ्रेंडली जोक्स आपको सुनाना है. अगर जो हमारे आरजेज उस शो के हंस पड़े तो आप जीत जाएंगे डबल पास ऐसे ही. लेकिन इसके अलावा आप टिकट्स ले सकते हैं bookmyevent.co.nz पर. जो शो है ये 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर रहेगी, जहां पर आप कृष्णा अभिषेक साथ में राजीव ठाकुर को हंगामा मचाते हुए देख सकेंगे.

हम पर अक्सर आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी हम शेयर करते रहते हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ने अपना जो ऑफिशियल कैश रेट है यानी कि OCR को कुछ 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया है टू 2.5%, और इसके चलते कीवी बैंक और वेस्टपैक इन दोनों बैंक्स ने अपना जो होम लोन है इसको इंक्रीज किया है टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस। और इन चेंजेस में कुछ जो होम लोन रेट है वेरिएबल होम लोन रेट इसका जो रेट्स है 5.75% से 6% जा चुका है। इसके साथ में जो रिवॉल्विंग लोन रेट है ये 5.8% से कुछ 6.05% तक हो जाएगा। ये जो चेंजेस है जुलाई 13 से न्यू लैंडिंग के लिए आ रहे हैं, साथ में जुलाई 27 से एग्जिस्टिंग लैंडिंग के लिए आ रहे हैं। तो अभी से ही आप कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले क्योंकि इन चेंजेस के बाद में कुछ इम्पैक्ट हमारे रीपेमेंट्स पर भी होंगी।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: Rebel are turning up the heat this long weekend with red hot savings. There's epic half price deals on clothing, shoes and more. Plus score a scorching 20 to 40% off store wide. Stores open till 9 p.m. tonight, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian designed award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाए, रिश्तों को और करीब लाए। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
7: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today, only at House of Travel. T&Cs apply.
8: Doorbuster deals have dropped this long weekend at Noleeming. Snap up unmissable deals on tech and home appliances before they're gone. 3 days only, ends Sunday 12th July while stocks last. Conditions apply. Now's the time to shop. Doorbuster deals are on at Noleeming.
9: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
10: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल, शेफ एलेक्स?
9: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
10: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
9: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
11: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
12: व्हाई स्विच टू टावर? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
14: हम पर मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं और इस महीने यानी कि 25th ऑफ जुलाई को आपके लिए जेके स्टार प्रोडक्शंस साथ में गाउट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं लेजेंडरी राहत फतेह अली खान को। जी हां, ये ओकलैंड आ रहे हैं अपना कॉन्सर्ट लेकर, जो कॉन्सर्ट है एक इलेक्ट्रीफाइंग नाइट, 25th ऑफ जुलाई को रहेगी एट द ट्रस्ट अरीना इन ओकलैंड। अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिए हैं तो dryticket.com पर जाकर अपने टिकट्स को आप अभी से ही खरीद सकते हैं। हम जानते हैं काफी फैंस है राहत फतेह अली खान को, जो उनके सूफी साथ में उनकी कव्वालियों को सुनना पसंद करते हैं, तो एक ऐसा मौका जहां पर आप इनको लाइव देख सकते हैं और सुन सकते हैं। याद रहे 25th ऑफ जुलाई एट द ट्रस्ट अरीना इन ओकलैंड, और आप टिकट्स ले सकते हैं dryticket.com से।

0: best of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: अक्सर हम पर मैं अभी आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस भी ढूंढकर लेकर आता रहता हूं. तो इस बार के लिए इसे ध्यान से सुनिएगा. जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत और कड़वी बातों से किसी का दिल का दरवाजा कैसे खुलेगा.

0: You're listening to Avineet.
1: देखते देखते हम पर इस शो के आखिरी पड़ाव यानी कि फाइनल आवा पर हम पहुंच ही गए हैं। इस आवा भी आपका खास स्वागत करते हैं। अभी ही आपने ट्यून इन किया है, वेलकम टू द शो। अभी का साथ है, ढेरों सारा प्यार लेकर आया था और बांटता रहूंगा आपके साथ इस फाइनल आवा में भी। अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा ऑन 104.2 FM साथ में रोवा पर।

हम पर मैं अभी अक्सर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस देता रहता हूं, तो इस बार के लिए आपको बता दे गरबा नाइट लेकर आ रहे हैं राज गढ़वी। जी हां, राज गढ़वी इनको लेकर आ रहे हैं लोटस प्रोडक्शन, साथ में श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता, प्रांशी ग्रुप। और ये जो गरबा विद राज गढ़वी है ये रहेगा लाइव इन ओकलैंड। जी हाँ, आपको सिर्फ जाना होगा द महात्मा गांधी सेंटर ऑन द 1st of August। और यहाँ पर जो एपिक सेलिब्रेशन है, म्यूजिक है, डेंस है, ये सभी कुछ आपके लिए रहेगा। अगर जो इस गरबा नाइट के लिए आपको टिकट चाहिए तो आप जाइए सिर्फ events.tickets.co.nz, याद रहे events.tickets.co.nz पर जाइए। या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्वप्निल को कॉल करें 02243947 36 पर, 02243947 36 पर। याद रहे गरबा नाइट विद राज गढ़वी, ये लाइव इन ओकलैंड रहेगा एट द महात्मा गांधी सेंटर ऑन द 1st of August। टिकट्स आपको मिल सकते हैं events.tickets.co.nz।

हम पर आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ और साथ में कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ढोली तारो ढोल बाजे। जब तक ये गाना बज रहा था हमारे मैसेज प्लेटफॉर्म पर एक प्यारा से मैसेज आया कि एक बार फिर गरबा नाइट के बारे में बताइए। तो चलो गरबा नाइट लेकर आ रहे हैं राज गढ़वी, और ये जो गरबा नाइट है विद राज गढ़वी ये रहेगा लाइव इन ओकलैंड ऑन द 1st of August एट द महात्मा गांधी सेंटर। और टिकट्स के लिए आप इवेंट्स टिकट्स न्यूजीलैंड यानी कि इवेंट्स टिकट्स .co.nz पर जाकर ले सकते हैं। और इसके अलावा स्वप्निल को 0224394736 पर

फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
8: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki, Altogether Auckland.
10: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
11: No way.
12: We in trouble?
10: Nah, it's BP Plus.
12: What is that?
10: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
13: Sweet! Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply. New customers only for a limited time.
14: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandesh bheje ja sakte hain. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
15: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
0: कभी भी कहीं भी.
16: हम पर रवि का साथ है और आप हमें 104.2 FM या फिर रोवा पर सुन रहे हैं. आपको रोवा का खास करके इम्पोर्टेंस बता दूं. रोवा पर अक्सर आपके लिए प्रमोशंस होते हैं जहां पर आप फैंटेस्टिक प्राइजेस जीत सकते हैं. तो अगर अभी तक आपने किसी कारण रोवा को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप कॉम्पिटिशन्स के अलावा हम म्यूज़िक स्टेशन्स पर जो गाने आपके लिए सेलेक्ट करके रखे गए हैं इन्हें भी सुन सकते हैं. जैसे हम रिवाइंड 60s और 70s के गाने स्ट्रेट फ्रॉम बॉलीवुड. इसके साथ साथ अगर जो आप 80s के गानों को पसंद करते हैं तो हम 80s जुकबॉक्स भी आपके लिए है. अगर जो आप फिजी भजन सुनना पसंद करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि फिजी भजन्स को आप किसी भी समय आप अपने कन्वीनियंस पर सुन सकते हैं. इसके अलावा चढ़ती कला, पंजाबी हिट्स अगर जो आप सुनना पसंद करते हैं, सो फॉर ऑल द पंपिंग पंजाबी हिट्स यहाँ पर आपको मिल सकता है चढ़ती कला के नीचे. साथ ही साथ में फिजी कीर्तन संग्रह, जहाँ पर फिजी के कीर्तन आर्टिस्ट के आवाजों में आप सुन सकते हैं कीर्तन कलेक्शंस. और इसके अलावा ये सभी कुछ आपके साथ में है, आपके पास में ऑप्शन है रोवा पर सुनने के लिए. तो याद रहे, हम म्यूजिक स्टेशंस ओनली ऑन रोवा.

0: खुश रहो एक साथ।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: हम पर ये सिलसिला अभी के साथ में 12 बजे से चलता रहा है। आपको अब की बार बता दें कि कुछ प्री इलेक्शन पोल रिजल्ट सामने आए हैं, जहां पर टैक्स पेयर्स यूनियन ने एक पोल किया है और इस पोल के रिजल्ट को देखें अगर जो तो क्रिस हिपकिंस इज जस्ट अहेड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, अगर जो बातें करें एज द प्रिफर्ड प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो रिजल्ट सामने आई है, यहाँ पर पार्टी वोट के आधार पर लेबा ने कुछ पोल किया है 31.5% और इसके साथ साथ नेशनल इज सेकंड विद 30.5% रिजल्ट एज पर लेटेस्ट पोल्स। यानी कि ये जो पोल है ये यही इंडिकेट करता है कि लोग प्रिफर करते हैं लेबा पार्टी को विद क्रिस हिपकिंस एज द प्रिफर्ड प्राइम मिनिस्टर, और इसके साथ में क्रिस्टोफर लक्सन दूसरे पोजीशन पर है। लेकिन पॉलिटिक्स है, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, एंड ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन योर वोट्स। तो आप अपने मत पर, आपका खुद का अधिकार है, ये तो सिर्फ एक पोल है, आप जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: A very good evening, everyone. Welcome to the show. मैं क्रिश आ गया हूँ आपके साथ देने के लिए. It is a long weekend. तीन दिनों की छुट्टी है. आज 10th जुलाई है और आज आपके लिए है लॉन्ग वीकेंड. आज लॉन्ग वीकेंड की जो अहमियत है उस पर भी बातें करेंगे. सिग्निफिकेंस क्या है इस पर भी आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जानकारी. मैं क्रिश आ गया हूँ अभी से लेकर मिडनाइट तक प्रोग्राम लेकर. आपको बस हमारा साथ देना है क्योंकि आज मो म्यूज़िक लेस टॉक ऐसा ही कुछ रहेगा. इंटरेस्टिंग खबरें, बॉलीवुड खबरें और साथ ही में साइंस रिलेटेड न्यूज़ तो हमारे पास होते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे अजीबोगरीब जानकारी जो आपके साथ मैं शेयर करते रहता हूँ आज वो भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. बट फर्स्ट आप बैक टू बैक सॉन्ग्स तो आपको मैं सुनाऊँगा. क्रिश का बहुत सारा प्यार सुनते रहो हम. वेलकम टू द शो.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है मिडनाइट तक हमारा साथ रहेगा ओल्ड मसल स्टेम सेल्स कैन एक्ट यंग अगेन ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की स्टडी है जुलाई 3 को पब्लिश किया है साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया एक ऐसा प्रोटीन जो मसल रिपेयर को स्लो कर सकते हैं एज पीपल एज रिड्यूसिंग द प्रोटीन इम्प्रूव करेगा सेल्स एबिलिटी टू हील इंजरीज और कहा गया है कि ये सेम प्रोटीन है जो ऑल्सो हेल्प करता है एजिंग सेल्स सर्वाइव तो रिसर्चर्स आर सीकिंग अ बैलेंस बिटवीन रिपेयर और सेल सर्वाइवल और ये जो काम है इससे आगे चलकर ट्रीटमेंट्स इम्प्रूव हो पाएंगे फॉर एज रिलेटेड मसल लॉस तो ऐसे बड़े बड़े काम अब हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं जो बरसों से करते आए हैं लेकिन अभी मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग रिसर्चर्स आ रहे हैं जिसमें कुछ अलग अलग डिस्कवरीज हमारे सामने लेकर आया जा रहा है जिससे ह्यूमंस का बहुत भलाई हो सकता है मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
1: Big Barrel, Big Range, Bigger Deals. Glenmurray Port, Sherry, Peated, Chardonnay or Cabernet Cask Whiskey Range, 700ml, $59.99. Screwball Peanut Butter Whiskey, 700ml, $54.99. And Maloney's Irish Cream Liqueur, 700ml, $17.99.
2: Big Barrel, Big Range, Bigger Deals.
3: Big Barrel, your local liquor store.
4: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
6: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
7: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
9: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast malang jo.
10: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, एक के बाद एक आपके सारे favorite songs मैं लेकर आऊंगा। कुछ ही देर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि vitamin C is linked to better brain health। जापान की ये स्टडी है और इस पब्लिकेशन में क्या कुछ कहा गया है इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। आज लॉन्ग वीकेंड है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपका लॉन्ग वीकेंड क्या कैसा चल रहा है। आई एम श्योर कुछ प्लानिंग आपने किया होगा फैमिलीज के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का, या फिर कहीं बाहर जाने का, शॉपिंग करने का, या फिर सिर्फ घर पर चिल करने का। अब हमें बताना कि आपका क्या प्लान है। कृष का साथ है।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Vitamin C, agar aap lete hain, to isse better brain health ho sakta hai. Researchers ka ye manna hai. Ek surprising connection inhone dhoond nikala between vitamin C and healthy brain function. Kaha gaya ki ye vitamin hai. It appears to support important neurological processes. Is finding se ab aage chalkar brain aging ki understanding ko improve kiya ja sakta hai. Scientists ab investigate kar rahe hain potential therapeutic applications. और कहा गया है कि इस रिसर्च ने एक और बेनिफिट ढूंढ निकाला है ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन. तो इसलिए विटामिन सी फ्रूट्स वगैरह हम जो लोग कहते हैं डॉक्टर्स या जो प्रोफेशनल्स या फिर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि खाना ज़रूरी है उसके पीछे इनफैक्ट बहुत ही प्रॉपर ये लिंक बनाया गया है ये कनेक्शन बनाया गया कि किस तरह से ये हेल्थी ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. लॉन्ग वीकेंड आज है और काफ़ी लोग 3 दिनों की छुट्टी एंजॉय करेंगे. तो कई बार भी आप गए हैं तो आप हमें वहाँ से रोबो के जरिए सुन रहे हैं. आपको भी याद करते हैं.
2: जैसे

0: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
1: The Cooperative Bank has shared over $25 million in profit with our customers. Switch to the Cooperative Bank today and get a share of $25,000. Better. Bank Better New Zealand. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
2: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
4: हाँ. अच्छा,
3: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
4: मिसेस सिंह.
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: वेलकम बैक एवरी वन, यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। फ्राइडे 10th जुलाई है, लॉन्ग वीकेंड है और मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए आ गया हूँ। और 6 to 7 आपने हमारा साथ दिया, इट वॉज अमेजिंग। और ऐसे ही 7 to midnight अभी आपको हमारा साथ देना है एंड आई एम श्योर आप देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, आपसे इंटरेक्शन हो रही है, आपके लिए गाने प्ले किए जा रहे हैं हम लोग, और 24/7 बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स आपके लिए पेश करते हैं हम, और एंटरटेनमेंट तो आपके लिए होता है भरपूर। तो ऐसे में आपको बस हमारा साथ देना है, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग खबरें भी मैं लेकर आया हूँ प्यारे गानों के साथ में, तो इट मेक्स इट इवन मोर वंडरफुल कि ऐसे इंटरेस्टिंग खबरें भी अगर आपको मिलती रहे इन गानों के बीच। कुछ और गाने आपको सुनाते हैं, बैक टू बैक सॉन्ग्स में लाया हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग जो खबरें हैं इसका सिलसिला शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी आपके लिए।

बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आप सभी को याद करता हूँ जो अभी फिलहाल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर आप ओकलैंड से बाहर हैं, रोवर के जरिए आप हमें सुन रहे हैं तो खास स्वागत आपका है। अभी ओकलैंड में आप है और ट्रैवलिंग हो रही है, कहीं पर आप जा रहे हैं फैमिली के घर या फिर फैमिलीज के साथ आप कहीं पर जा रहे हैं, तो खास स्वागत आपका है। सुनते रहो हम

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
2: We've got double glazing.
1: Have you still got that cold, damp feeling?
3: Yeah, we do.
1: So Tori and Ben got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
5: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today only at House of Travel. TNCs apply.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: हम पर एक के बाद एक आप सुनते हैं बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, और यही हमारी मकसद है कि आपके लिए हम पेश करें मोर सॉन्ग्स, मोर म्यूजिक एंड लेस टॉक. और ऐसा ही हो रहा है जबकि आज लॉन्ग वीकेंड है, आप एंजॉय कर रहे हैं फैमिली टाइम, या फिर आपका कुछ तैयारियां हो रही है, कुछ घर पर पार्टी चल रही है, तो फिर ऐसे में यहां से गाने आप तक हम पहुंचाएंगे. आपके लिए प्यारे प्यारे गाने मैं लेकर आया हूं, आप एंजॉय करते रहे इन गानों को. कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें जो मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी अभी आपको बताऊंगा. कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रे ऑन पाउडर से सीवियर ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है इन जस्ट 1 सेकेंड. रिसर्चर्स ने ये ढूंढ निकाला, यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्चर्स का मानना है कि ये होता है. एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ये ढूंढ निकाला है. इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. आपको बस हमारा साथ देते रहना है. आज है 10th जुलाई. कुछ लोगों को याद करेंगे जिनका जन्मदिन है, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, एनवायरनमेंट भी है और वाइब भी है. कृष का साथ है

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आपके फेवरेट सॉन्ग्स ओनली ऑन हम पेश करते रहेंगे, इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे। इन दिनों आपका फेवरेट गाना कौन सा है वो आप हमें ज़रूर बताएं। 5599 पर आप हमें टेक्स्ट कर बता सकते हैं। समय रहा तो एक सवाल भी लेकर आएंगे आपके लिए, जिसका जवाब आप हमारे पास 5599 पर भेज सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड जारी है और कुछ ही देर में आज जो लॉन्ग वीकेंड जारी है इस पर बातें करेंगे, इसकी अहमियत और इसका क्या सिग्निफिकेंस है जो आप शायद जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ में। कृष के साथ हैं, सुनते रहो हम।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
6: Shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals on now. Cozy electric blankets, flannel sheets, thick warm duvets. Don't miss 20 to 70% off the entire store. With all stores open till 9 tonight at Briscoe's. See you online for T's and C's.
7: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90. Or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Lowest prices are just the beginning.
8: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
9: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
10: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. जबकि आज मातरिकी पब्लिक हॉलिडे है, तो मातरिकी के पीछे कुछ ऐसे जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. आपको जानना है कि इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यू है. तो मातरिकी इज अ स्टार क्लस्टर, एक सिंगल स्टार नहीं लेकिन एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स है. इट इज़ पार्ट ऑफ द पेलियाइडिस स्टार क्लस्टर, जिसमें जो लोकेटेड है अबाउट 444 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ. और ये जो नाम मातरिकी है, सेवरल मीनिंग्स, और इसका क्या मतलब निकलता है इस पर जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और रात 12 तक हमारा साथ रहेगा.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: मतरे की हॉलिडे अभी जारी है, आप इसका भी एंजॉयमेंट उठा रहे हैं. तो मतरे की का जो वर्ड है, इसका सेवरल मीनिंग्स निकलता है. इट इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज द आईज ऑफ द गॉड, तफिरी मातेया ओ लिटिल आईज कहा गया है. और मतरे की सिग्नल्स द माउरी न्यू ईयर. ये फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द क्लस्टर है इन द प्री डॉन विंटर स्काई, व्हिच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर इन द माउरी लूनर कैलेंडर. और भी जानकारी बहुत ही जल्दी आप

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: Welcome back everyone, you're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai, long weekend hai, matri ki aaj hai. To aise mein kaafi log enjoy kar rahe hain. Hum kuch facts aur interesting khabre bhi is public holiday par share kar rahe hain aapke liye. Khaas taur par matri ki ke baare mein, ki iske peeche kya matlab hai, kya significance hai, kin kin cheezo ke baare mein हमें हमारा ध्यान होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हॉलिडे. तो ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. इट इज़ पास्ट एट. वेलकम बैक एवरीवन. कुछ और गाने आपको सुनाते हैं और भी जानकारी जो है ये बढ़ाते रहेंगे आपके लिए गानों के साथ साथ प्रोग्राम में. आज क्रिश के साथ है. वेलकम बैक एवरीवन.

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मत रखी न्यू ईयर जो अभी है, इट सिग्नल्स माउरी न्यू ईयर. ये भी कहा गया है कि न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विद ए पब्लिक हॉलीडे बेस्ड ऑन एन इंडिजिनस ट्रेडिशन. ये पब्लिक ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे ये बना इन 2022. और द मतरेकी क्लस्टर इज़ यूजली एसोसिएटेड विद 9 स्टार्स और हर एक स्टार का अपना सिग्निफिकेंस होता है और इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द एनवायरमेंट. ईच स्टार का क्या स्पेशल मीनिंग है इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी आपके लिए.

0: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
4: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
3: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
5: Shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals on now. Cozy electric blankets, flannel sheets, thick warm duvets. Don't miss 20 to 70% off the entire store. With all stores open till 9 tonight at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. Squirrel.co.nz.
7: आपके सामने एक रेड बटन है.
8: दबा दिया.
7: नहीं दबाना था.
9: The madness is back. धमाल 4.
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
9: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी. Return in धमाल 4. Directed by इंदिरा कुमार.
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
9: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
12: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता.

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहेगा क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आज फ्राइडे है, 10th जुलाई है, लॉन्ग वीकेंड है, 3 डेज की छुट्टी शुरू हो गई है और आज पहला दिन है। स्कूल स्टूडेंट्स भी घर पर है, आपको भी शामिल करेंगे बहुत ही जल्दी, आपको भी याद करेंगे, आपके लिए भी गाने प्ले करेंगे।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey. आज दिए माज दिए मोमबत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश का साथ है। आज अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम विश करना चाहेंगे। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे। कुछ स्पेशल हो रहा है, कुछ प्लान किया गया है या आगे चलकर भी कुछ होने वाला है आपके लिए, तैयारियां हो रही है, तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. याद रहे म्यूजिक स्टेशंस को भी आप रोवर के जरिए सुन पाएंगे. हम रिवाइंड में आप 60s और 70s हिट्स सुनेंगे. 80s जूक बॉक्स में काफी 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सुनेंगे. फीजी भजन्स में 24/7 फ्री भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट के कीर्तन आप सुन पाएंगे. चढ़दी कला है पंजाबी हिट्स, फीजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइसेस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट यहाँ पर होंगे आपके लिए इनके गाने सुनने का मौका. और राहत फतेह अली खान फॉर द लव ऑफ सूफी एंड कवालीज, आप इनके म्यूजिक स्टेशन जो है राहत फतेह अली खान नाम के वो आप चेकआउट करें. इट इज़ गोइंग टू गिव यू रियली नाइस सॉन्ग्स. तो ये म्यूजिक स्टेशन सुनना ना भूले, रोवा के जरिए आपको सुनने को मिलेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

लड़की कितनी क्यूट है, तेरा फेस भी कितना स्वीट है, तू ब्यूटी, तू चार्मिंग, तू टनाटन, मैं धनाधन, मैं दिल में तुझे बसाऊंगा और अपना तुझे बनाऊंगा, लंदन तुझे घुमाऊंगा, वहां पानी पूरी खिलाऊंगा, हनीमून करके आऊंगा, फिर शादी यहां बनाऊंगा, मैं रोमियो तू जूलियट, ना समझ तू मुझको इडियट, अरे हाथ छुड़ा कर चली किधर, वो यार मेरे

0: रे शेख चिल्ली,
1: चुप हो जा भूरी बिल्ली।
0: मैं आफत की पुड़िया,
1: तू भोली भाली गुड़िया।
0: मवाली,
1: मैं हीरो,
0: तू पागल,
1: तू जीरो,
0: आवारा,
1: तुम्हारा, समझ गए इशारा।

0: Streaming live 24/7 on Rova.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budge hit gaane.
0: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
3: वेलकम बैक एवरीवन. इट इज़ पास 9 PM और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिएगा. प्यारे गाने और इंटरेस्टिंग खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. कुछ ऐसी बातें भी है जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपील करेगा. आई एम श्योर अभी देर से आप भी जाग रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड है, आप भी आराम कर रहे हैं और आप भी इंजॉय कर रहे हैं. तो जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं आपको भी शामिल करेंगे इसी घंटे पर. आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेकर आए हैं. मतरी की जो पब्लिक हॉलिडे आज है इस पर भी जानकारी देंगे. ईच टैग का क्या स्पेशल मीनिंग है इसी घंटे पर आपके लिए हम बताएंगे. साथ ही में कुछ शोज आने वाले हैं, कुछ इवेंट्स होने को है, कुछ सामाजिक सूचनाएँ हैं, वो भी एक एक करके इसी प्रोग्राम में आपके साथ हम शामिल करेंगे. स्वागत है आपका.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ईच स्टार का जो मतलब है मातरिकी जो है इट मींस वेलबींग और रिफ्लेक्शन। पौतुकावा रिमेम्बरिंग दोज हु हैव पास्ड अवे इसका ये मतलब है। तुपुआनुकु फूड ग्रोन इन द सोइल इसका ये मतलब निकलता है। और तुपुआरांगी फूड फ्रॉम द स्काई सच एज बर्ड्स एंड फ्रूट। कुछ और स्टार्स के बारे में और उनका स्पेशल मीनिंग के बारे में जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Big barrel, big range, bigger deals. Kirin Hiakitsu, 4% lemon 10-pack cans, $22.99. Jim Beam or Canadian Club, 4.8% 10-pack cans range, hot 2 for $50. And Cruiser, 5% 12-pack cans range, 2 for $50.
2: Big barrel, big range, bigger deals.
3: Big barrel, you local liquor store.
4: Stuck for dinner ideas?

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी फॉर अ नाइट ऑफ अनस्टॉपेबल लाफ्टर. ट्राइविजन इवेंट्स प्रेजेंट्स द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर. ये दोनों लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं. डबल द कॉमेडियंस डबल द लाफ्टर. वॉच टू ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉमेडी स्टार्स एक साथ में ये परफॉर्म करेंगे फॉर वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. इनका मैजिक ऑफ लाइव कॉमेडी एक्सपीरियंस कीजिए बियॉन्ड द टीवी स्क्रीन. इनका लाफ आउट लाउड मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कीजिए. हिलेरियस स्टोरी सुनिए. रेजर शार्प पंच लाइन्स भी सुनने का मौका मिलेगा. हंसने का मौका मिलेगा और काफ़ी ऑडियंस इंटरेक्शन भी होगा इनके शो में. तो ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर द परफेक्ट नाइट आउट. अनफॉरगेटेबल मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आप आ जाइए. और VIP टिकट्स बिक चुके हैं तो आप जल्दी से टिकट्स जो रह गए वो आप ले लें. ओकलैंड इज बजिंग सो डोंट वेट अंटिल रिमेनिंग सीट्स डिसअपीयर. आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है. आप इजीली बुक कर पाएंगे अपने लिए सीट्स. टिकट्स बहुत ही जल्दी से बिक रहे हैं. ग्रैब योर टिकट्स नाउ एट bookmyevent.co.nz बिफोर दे आर गॉन. 18th जुलाई को ये होने जा रहा है. विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होगा. अगर आप 0800-004-866 पर कॉल करते हैं एंड इफ़ यू क्रैक अ जोक ऑन एयर इफ़ द RJ ऑन एयर लाफ्स आपको डबल पास मिल सकता है. ओनली क्लीन ऑन एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए प्लीज़. तो आप ये कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 6 PM के बीच. और ऐसे ही आप जीत पाएंगे डबल पास हमारे साथ होकर. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन की ओर से सूचना है कि अखंड रामायण पाठ यहाँ पर होने जा रहा है सैटरडे 1 और संडे 2 अगस्त को। सैटरडे को रोट पूजा होगा, आरती और रामायण पाठ भी होगा 8:45 AM। संडे को सुबह 10 बजे रामायण पाठ खत्म होगा, 10:30 AM हवन और आरती भी होगी। महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। और भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 09836464647 पर। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

न्यूज पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरी

0: anywhere you get your podcast.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलिशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस्तमा की लाइट्स, पापा टोटो.
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
10: Media Works complaints. How can I help?
11: My kids won't shut up.
10: I'm not sure that's our problem.
11: They keep reciting lines from one of your radio ads.
10: Aw, cute.
11: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
12: What do you want, son?
13: I want me some of that real southern chicken.
11: 28 times.
10: So where are you now?
11: Eating chicken.
14: Advertise with
15: Media Works.
14: New Zealand listens to us.
16: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
0: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast malang jaan.
17: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai. New Zealand Art and Culture Charitable Trust ki or se ek bahut hi shandar announcement hai. Shri Ram Leela aapke liye ayojit kiya ja raha hai. Stall inquiries ke liye aap Master Ashok se baate kar sakte hain. 021-179-5459 par. Ram Leela ek divine theatrical experience hone ja raha hai. Save the date. Ye date aapko mark karke rakhna hai. 8th August ko hoga. और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है, जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8th August. क्रिश के साथ है, और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Put your head to Gandhi.
2: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
3: नाइट शो आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन. इट इज़ पास्ट 10 और इस घंटे पर भी आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आएंगे. एज यूजुअल म्यूजिक लिस्ट टॉक आपके लिए चलता रहेगा. ज़्यादा से ज़्यादा गाने आपको सुनाएंगे, एक से बढ़कर एक गाने, नए पुराने, बहुत सारे रॉकिंग गाने हम लेकर आए हैं ताकि मूड बना कर रखे, वाइब भी बना कर रखे आपके लिए, जबकि लॉन्ग वीकेंड जारी है. आज तो पहला दिन है विच इज़ ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन दो दिन की छुट्टी अभी भी बाकी है. एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि आराम करना है, चिल करना है, रिचार्ज रिजुविनेट करना है. क्रिश के साथ हैं, वेलकम टू द शो.

मातर की हॉलिडे के बारे में बातें हो रही है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ईच स्टार्स जो होते हैं, ईच स्टार उनका क्या मतलब हो सकता है। तो वाईटी एक और स्टार है जिसका मतलब होता है फ्रेश वाटर एंड इट्स क्रीचर्स। एक और स्टार का नाम है वाईता जिसका मतलब है ओशंस एंड सी फूड। फिर एक और है वाई पूना आरंगी, इसका मतलब है रेन। और उरुरंगी, इसका मतलब है विंड्स। आखिरी वाला जो है हिवा ई तेरंगी, होप्स ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, इसका मतलब निकल कर आता है। कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें मातरिकी से संबंधित आपके लिए हम शामिल करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: ड्राइविंग यू होम द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हां जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहां पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
7: Kyun? Kya hua?
6: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne hi documents mange ki bas pooch hoi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
8: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
2: Big savings in store is long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants, and save on Water ID Advanced Interior 10 liter. July 9th se 12th tak. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson mein.
9: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice. And zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero. Zero alcohol served everywhere this winter with a lime.

प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स, सोल स्टिरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मज़ेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25 जुलाई को, प्रेजेंटेड बाय जय के स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25 जुलाई ट्रस्ट अरिना में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. जितने भी लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करना चाहेंगे. रोवा ऐप के जरिए आप हमें सुनते रहे क्योंकि रोवा के जरिए म्यूजिक प्लस स्टेशंस का मजा तो आप ले सकते हैं लेकिन तमाम प्रमोशंस जो जारी रहता है कॉम्पिटिशंस जारी रहते हैं जो आपके लिए टू पार्टिसिपेट इन विन फेबुलस प्राइजेस ये भी आपके लिए टाइम टू टाइम रहता है. तो इसके लिए रोवा डाउनलोड करना ना भूले. काफ़ी लोग जो अभी ऑकलैंड से बाहर है रोवा के जरिए आप हमें सुन रहे हैं आपको खास याद करते हैं. लॉन्ग वीकेंड प्रोग्राम जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: अरे Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Two Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
11: कभी भी कहीं भी।
12: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले, क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या। ये एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट Zerko एंड एन AWS community builder, जो बहुत ही बारीकी से ब्रेक डाउन करते हैं द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वे दैट एक्चुअली मेक सेंस, चाहे ChatGPT हो या AI एट वर्क हो, टू जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेसी कंसर्न्स, अपॉर्चुनिटीज या कोई भी स्किल्स दैट यू नीड फॉर द फ्यूचर। ये कन्वर्सेशन ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है और डिस्कस करता है इन मुद्दों को। चाहे आप एक्साइटेड हो, क्यूरियस हो या फिर लिटिल नर्वस अबाउट AI, ये एपिसोड आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं। तो AI इज एवरीवेयर, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले। 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो। इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो। तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं।

0: streaming live 24/7 on Rover.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Put your head to Gandhi.
0: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
3: इट इज़ आवर फाइनल आवर. आज फ्राइडे है, 10th जुलाई है, पब्लिक हॉलीडे है और इस फाइनल आवर में मैं आपका स्वागत करता हूँ. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ 6 to 2. अभी तक आपने हमारा साथ दिया, विच इज़ स्लाइटली पास्ट 11. थैंक यू सो मच, आपका साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिएगा क्योंकि 12 तक हम आपको सुनाएंगे आपके फेवरेट सॉन्ग्स और इंटरेस्टिंग खबरें. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. जहां कहीं पर भी आप हैं और जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, स्वागत है आपका. वेलकम टू द शो. क्रिश के साथ है कुछ और बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके लिए.

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
2: Showerdome.co.nz.
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: My kids won't shut up.
3: I'm not sure that's our problem.
4: They keep reciting lines from one of your radio ads.
3: Aw, cute.
4: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
5: What do you want, son?
6: I want me some of that real southern chicken.
4: 28 times.
3: So where are you now?
4: Eating chicken.
7: Advertise with
8: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
10: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats... Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
11: What if your next holiday wasn't just a holiday?
12: But the adventure everyone talks about.
11: Imagine chasing waterfalls.
12: Wandering lush rice terraces.
11: Catching unforgettable sunsets.
12: And relaxing at iconic beach clubs.
11: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk.
12: Discovering incredible temples.
11: Tasting world-famous street food.
12: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
13: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
14: ले ले तुम
15: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
16: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मातरिकी फेस्टिवल, मातरिकी जो पब्लिक हॉलीडे, इस पर भी जानकारी आपको लिए लेकर आए हैं हम। आई एम श्योर काफ़ी जगहों पर फेस्टिवल्स भी हुए होंगे जहां पर इसको सेलिब्रेट भी किया गया होगा। और फूड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। काफ़ी सेलिब्रेशंस इंक्लूड शेयर्ड मील्स, हकारी, स्पेशली सीजनल फूड्स कनेक्टेड टू लैंड एंड सी। और ये सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंटली अक्रॉस आउटेरोवा। Different Iwi and tribes have their own traditions, stories or ways of observing the season. और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और जानकारी जो हमारे हाथ लगेगा, इस पर जानकारी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, आपके साथ शेयर भी करूँगा।

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक सॉन्ग्स भी आपके लिए हम लेकर आएंगे आते रहेंगे और 12 तक हमारा साथ रहेगा। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अटेंशन रास्तों पर रखना ज़रूरी है। आप भी बहुत ही केयरफुली और सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, यही हम बेस्ट विशेज आपको दे रहे हैं। और अगर घर पर रहे, आराम कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ है, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं और वहीं पर हम की गूंज भी बैकग्राउंड में चल रही है, तो खास स्वागत करते हैं, आपको याद करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को भी शामिल करते हैं जो अपने स्कूली छुट्टी पर हैं और देर तक आप भी जाग रहे हैं, तो आपके लिए अगला गाना।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हमारा शो यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होती है जस्ट चिल सैटरडे को, जस्ट चिल 12 से लेकर शाम 6 तक मैं लेकर आ जाऊंगा। अपना बहुत ही ख्याल रखें, गुड नाइट एवरीवन।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम नॉन स्टॉप बॉलीवुड।
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए. Night Fly.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Big savings in store is long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants and save on Water ID Advanced Interior 10 liter. July 9th se 12th tak. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson mein.
2: Make long weekend lie-ins longer with Beds R Us. Save on selected sleepy head beds with 55% off the Sublime Serenity Breeze. Queen size. Now from 1687. Find your best sleep in our long weekend sale at Beds R Us Merigao and Poke Kohe, where dreams begin.
3: Smart Pay
4: is now.
3: Shift 4. Dakota NZ. Global commerce, local service.
4: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
3: Shift 4, Dakota NZ. Global commerce, local service.
5: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
6: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods multi-grain dosa batter banaye. Har meal healthy aur delicious, high protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods multi-grain dosa batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget gaane.

0: flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला.
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: चाहे आप हमके दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Budget Gandhi.
1: Night Flight.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन socials.
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया,
3: नहीं दबाना था।
5: The madness is back, धमाल 4,
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा,
5: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी, रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार।
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
5: Watch the biggest family entertainer, Dhamal 4, in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
5: कभी भी कहीं भी। Saturday breakfast on Hum.
6: Aa gaya.
5: You're listening to Avineet.
7: हर सुबह एक नई शुरुआत है, कल जैसा भी हो आपके पास आज है, एक कोरे कागज की तरह इसे आप चाहे किसी रंग से भी भर सकते हैं। मैं हूं अभी आपके साथ में हो गया हूं ऑन अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग, जबकि आज है 11 तारीख जुलाई। ऐसे में आपका साथ देंगे अभी से लेकर 12 बजे तक। हम जानते हैं काफ़ी लोग रास्ते पर है, सफ़र कर रहे हैं, अपने अपने काम पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, या फिर आप निकल पड़े हैं जबकि लॉन्ग वीकेंड है, ऐसे में सफ़र पर निकल पड़े हैं और घूम रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, या फिर एक नए शहर में हैं। आप सुबह सुबह हमें सुन रहे हैं हम पर 104.2 FM, साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और यही चाहेंगे आपकी जो सुबह है बिल्कुल खूबसूरत रहे, आज का दिन आपके लिए बिल्कुल खूबसूरत रहे, यही विशेष लेकर हम आ गए हैं अपने स्टूडियोज़ में और आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर 12 तक बिल्कुल धमाकेदार शो रहेगा, जबकि सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है। ऐसे में 5599 और साथ में 0800 004 866 पर आप अपने गुड मॉर्निंग का मैसेज जो है संदेश है हमारे पास में भेज सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। मैं हूँ अभी, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस शो की शुरुआत करते हैं एक और एक दस्तक के साथ में, जहां पर आपको गुड मॉर्निंग ही विश करेंगे।

हम पर आप सुन रहे सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो, मैं हूं अभी आपके साथ में। आज का मौसम अगर जो आपके लिए बताएं तो बिल्कुल फाइन फोरकास्ट किया गया है, जबकि आज है 11 तारीख जुलाई, तो ऐसे में बिल्कुल सनशाइन आपके लिए प्रेडिक्ट किया गया है, फोरकास्ट किया गया है। इसके साथ में जो सनराइज रहेगा एट 7:32 दिस मॉर्निंग और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा आज दिन का ये रहेगा 13 डिग्रीज तक, तो ऐसे में आप बिल्कुल लुक फोर्ड कर सकते हैं एक सनी ब्राइट दिन के लिए। और कुछ प्लान किया है आपने आउटडोर एक्टिविटीज, तो शायद आज आपको ये सूट करेगा। इतना ही नहीं, ओकलैंड के बाहर भी अगर जो देश भर के लिए हम मौसम पर नजर डालते हैं तो सभी शहरों में खास करके फोकस्ड किया गया है कि जनरली सनी डे रहेगा। तो देयर यू गो, आपके लिए आज का दिन बिल्कुल खुशनुमा रहेगा और बिल्कुल सनी रहेगा। ऐसे में आप भी अपने अंदाज में बिल्कुल घुल मिलकर एक दूसरे से मिल सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी प्लान कर सकते हैं।

0: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और आपके लिए मेलोडियस सैटरडे मॉर्निंग के लिए जो नंबर्स है म्यूजिकल नंबर्स ऐसे ही प्लेजेंट पेश करता रहूँगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ओवरनाइट यानी कि कल के जो समाचार है कुछ इस तरह से, कल साउथ ऑफ नेल्सन एक सड़क दुर्घटना हुई, एक टू व्हीकल कोलिजन हुआ था स्टेट हाईवे 6 साउथ वेस्ट ऑफ नेल्सन, और पुलिस ने ऐसा रिपोर्ट किया कि मेन रोड होप के पास में और ईडन रोड इंटरसेक्शन में जस्ट बिफोर 5 PM कल शाम को एक क्रैश हुआ था। और ये एक रूरल रोड है जहाँ पर 3 लोगों को चोट पहुँची है और 2 लोगों को सीरियसली इंजर्ड बताया गया है। तो ये कुछ जो समाचार है और इसके अलावा जो आज सुबह की पहली न्यूज़ आपके लिए 8 पर रहेगी। इसके साथ साथ में अगर जो देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी अभी न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे हैं। आज ये जगह जगह पर इनका जो कमिटमेंट्स है हमारे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ में, ये इनको कंप्लीट करते हुए नज़र आएंगे, या फिर दिन में आप इसके बारे में भी ज़्यादा सुन सकेंगे समाचारों में। तो ये कुछ जो न्यूज़ थी कल से लेकर और कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको अपडेट देना चाहते थे। लेकिन इन सभी के साथ में जो हमारा जो न्यूज़ अपडेट रहेगा फर्स्ट, ये 8 o'clock इन द मॉर्निंग रहेगा। इन द मीन टाइम आपको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और आपके पास में भी कोई मैसेज है आप हमारे पास में पहुँचाना चाहते हैं तो 5599 इज़ द नंबर। अगर जो कोई स्पेशल ओकेजन है आज आपके लिए, 11 तारीख जुलाई है, कुछ बर्थ डेज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर कोई और सेलिब्रेशन का रीज़न है, शायद आप वेडिंग एनिवर्सरीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा। लेकिन अगर जो अभी अभी आपकी आँख खुली है तो हमारी ओर से अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड कीप हमिंग।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं,
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम.
2: That's right, ये है सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम. मैं हूँ अभी आपके साथ में. इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन. जबकि सात पर जो

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी हाँ, ये सरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। देश में किसी भी जगह पर है आपका खास स्वागत करते हैं, या फिर विदेश में रोवा के द्वारा आप हमें सुन रहे हैं तो वेलकम टू द शो। जबकि ओकलैंड न्यूजीलैंड में मैं हूँ, अपने स्टूडियो से आपका स्वागत कर रहा हूँ, आपको मॉर्निंग प्लेजेंट्रीज विश कर रहा हूँ। तो इट्स अबाउट 6:32 AM इन द मॉर्निंग। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन ये आपको इन्वाइट कर रहा है टू द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को, यानी कि अगले महीने ही बेकन हेड स्काउट्स हॉल में ये जो कंपटीशन है ये रहेगा। जितने भी प्लेयर्स हैं, आपको अगर जो स्पेशल इंटरेस्ट है कैरम बोर्ड खेलने के लिए, तो आपके स्किल लेवल जो भी हो आपको इनक्रेज किया जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर, या फिर कॉल करें NZCA प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को ऑन 02109085067 पर। आपको कैरम बोर्ड खेलने की स्पेशल इंटरेस्ट है तो देर यू गो, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में जहां पर आप सोशलाइज कर सकते हैं विद लाइक माइंडेड पीपल जो कैरम खेलना पसंद करते हैं। 22nd और 23rd अगस्त को ये रहेगा एट बेकन हेड स्काउट्स हॉल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का जो फेसबुक पेज है यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूं अभी आपके साथ में ओनली ऑन हम। और आपको बता दे कि थोड़ी ही देर में आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या कुछ आज आप कर सकते हैं, आपके कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है। एंड सिंस इट्स अ मदर की वीकेंड, तो ऐसे में आप अपने बच्चों के साथ में स्पेशल क्या कर सकते हैं।
1: स्टार्ट योर सैटरडे फ्रेश विद द परफेक्ट मिक्स, सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
2: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.

0: हम का एनर्जी सुबह हो गई मामू सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
1: जी. आप सुन रहे सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम. मैं हूँ अभी आपका साथी. और आपको बता दें, सुबह सुबह फ्रेशली ब्रूड कॉफी का एक जो स्मेल होता है, एक अरोमा होता है, ये कुछ अलग ही बात होती है. इसके साथ साथ जबकि मातारी की वीकेंड है, ऐसे में आप अपने बच्चों के लिए कुछ आउटडोर एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ जाना होगा 88 BT रोड पुकीकोही. याद रहे 88 BT रोड पुकीकोही. यहाँ पर काइट डे है. जी हाँ, आप अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में आसमानों पर रंग बिरंगे तरह तरह के अलग अलग साइज़ के डिज़ाइंस के काइट्स आप देख सकते हैं, या फिर खुद इसमें शामिल होकर काइट फ्लाइंग कर सकते हैं. और आपको सिर्फ जाना होगा 88 BT रोड पुकीकोही. यहाँ पर आज 10 बजे सुबह से लेकर 3 बजे शाम तक ये जो काइट फ्लाइंग है, यहाँ पर आप जाकर देख सकेंगे, इसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे. और जो माओरी कल्चर है, इसके लिए काइट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थी. और मातारिकी के दिन पर आप अपने बच्चों को एक स्पेशल मैसेज भी दे सकते हैं, क्योंकि काइट्स अक्सर फ्लाइंग के पीछे ये इसको यूज़ करते थे फिशिंग के लिए, साथ में वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए. तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में 88 BT रोड पुकीकोही में जाकर आज काइट डे जबकि मनाया जा रहा है, इसमें आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं.

0: by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. A mass food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: With the kind compliments of our sponsors, हम पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं FIFA World Cup पर अपडेट्स, जबकि 7 बजे सुबह यानी कि कुछ ही देर में स्पेन और बेल्जियम के बीच में जो मुकाबला है ये रहेगा विद द क्वार्टर फाइनल्स. इसके साथ साथ कल सुबह 9 पर भी नॉर्वे और इंग्लैंड का बीच में ये जो खेल है रहेगा, ताकि इनमें से जो विजेता ठहरेंगी आगे सेमीफाइनल्स तक बढ़ सकेंगी. इसके साथ साथ कल 1 बजे दिन में क्वार्टर फाइनल्स में एक और एक लेग में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच में खेल रहेगा. अभी तक सेमीफाइनल्स में अपना जगह सिर्फ फ्रांस टीम ने ही बनाया है, और अभी आज जो खेल है स्पेन और बेल्जियम के बीच में जो विनर ठहरेगा ये भी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी. और जैसे जैसे ये खेल में कुछ प्रोग्रेस होता है, कुछ रिपोर्ट्स हमारे हाथ लगते हैं, आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आपके साथ में. लेकिन अभी के लिए स्पेन और बेल्जियम की टीमें बिल्कुल तैयार हैं टू टेक द फील्ड एट 7, और जैसे और कुछ प्रोग्रेस होता है जैसा हमने कहा है अपने स्पॉन्सर्स की ओर से सौजन्य से आप तक पहुंचाते रहेंगे.

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
3: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today, only at House of Travel. TNCs apply.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Yo, main hu chhota sa chhora.
2: You're listening to Avineet.
3: जी हाँ, हमारे स्टूडियोज में 7 बज रहे हैं और ऐसे में आपको विश करते हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मैं हूँ अभी आपके साथ में और साथ देता रहूंगा 12 तक, जबकि सैटरडे ब्रेकफास्ट शो है. ऐसे में 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. इसके अलावा हमारा हम फेसबुक पेज है, हम 104.2 एफएम का फेसबुक पेज, इसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भी अक्सर ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं आपके लिए. इसके अलावा जो डेली अपडेट्स रहते हैं हम यहाँ पर डालते रहते हैं. अभी आज सुबह सुबह हमने आपके लिए कोरी ग्लेन रिजर्व का एक वीडियो अपलोड किया है, इसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. अगर जो आपको पसंद है नेचर में अपना टाइम स्पेंड करना, या फिर यू कहें कुछ ट्री टॉप्स के साथ साथ उसी हाइट पर होकर चलना और उस ब्रीज को महसूस करना, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा वीडियो, क्योंकि यह ऐसा कुछ है जो आप आज कर सकते हैं. यह सभी कुछ हमारे साथ में है आज, जबकि 11 जुलाई है. अगर जो आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी खुशियाँ हमारे साथ में बांटना चाहते हैं, तो 5599 इज योर नंबर. इसके अलावा आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है या फिर कोई और अचीवमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि खुशियाँ जो होती है ये बांटने से बढ़ती है, तो 5599 पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा. इस आवा पर आपका खास स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं अरमान मलिक के.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।
2: मैं अभी आपके साथ में ब्रेकफास्ट शेयर कर रहा हूँ ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम। और चलो लगे हाथों आपको बता दे, कम्युनिटी न्यूज़ में श्री राम मंदिर जो कि सिचुएटेड है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में, ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए अखंड रामायण पाठ जो कि 1st और 2nd अगस्त को रहेगी। 1st अगस्त को सैटरडे इन द मॉर्निंग 7 बजे रोड पूजा से ये जो पाठ है आरंभ होगी, उसके बाद में आरती और फिर रामायण पाठ की जो कथा है ये शुरुआत होगी इसकी। और साथ साथ संडे को 10 बजे सुबह तक रामायण पाठ चलती रहेगी, उसके बाद में हवन और आरती रहेगी। यहाँ पर प्रोग्राम के थ्रू आउट आपके लिए महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जानकारी के लिए 09836-4647 पर आप कॉल करें। इसके साथ में न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला। और ये जो रामलीला है इसके इसको देखने के लिए डेट आप मार्क कर लीजिए, 8 अगस्त को ये रहेगी। और इस पर और जो डिटेल्स हैं आप तक जल्द से जल्द लेकर आएंगे। और अगर जो आपको स्टॉल के लिए इंक्वायरीज करनी है तो मास्टर अशोक को 02117954599 पर कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर जो आपके पास में भी कोई कम्युनिटी न्यूज़ है तो आप भी हमारे पास में ईमेल कर सकते हैं।

0: हाँ तू ही बता, कुछ ऐसे ऐसे नंबर्स जो बिल्कुल परफेक्ट है फॉर सैटरडे मॉर्निंग, और ऐसे में जबकि इट्स 17 मिनट्स आफ्टर 7 और सुबह 6 से मैं हूँ आपके साथ में, लेकिन एक भी गुड मॉर्निंग का मैसेज अभी तक नहीं पहुँचा है। ये तो आप हमारे साथ में कुछ नाइंसाफी कर रहे हैं। 5599 पर आप थोड़ी से अपने उंगलियों को तकलीफ दीजिएगा। गुड मॉर्निंग का मैसेज जब भी आता है तो मज़ा आ जाता है, लगता है कि लोग हमें सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो 5599 इज योर नंबर जहां पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। सुबह सुबह दो ही शब्द है गुड मॉर्निंग का, आप हमारे पास में भेज दीजिएगा। और कुछ सुनना भी चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं स्पेशल, इसका भी रिक्वेस्ट आप हमारे पास में भेज सकते हैं। इधर स्पेन और बेल्जियम के बीच में जो खेल हो रहा है, कुछ 18 मिनट के गेम ये हो चुका है, और इसके बावजूद स्पेन और बेल्जियम अभी भी निरोल से बराबर है। इस पर जो भी अपडेट्स जैसे जैसे हमारे हाथ लगेगी आप तक शेयर करते रहेंगे।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

और भी एंजॉयबल बनाने के लिए। अभी थोड़ी देर में हमने टेस्लोटो के बारे में बात की है ना, तो कुछ बताएंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स में लोग ज़्यादा अपने टिकट्स लेते हैं। स्टे ट्यून्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन है बस थोड़ी देर में हमारे साथ में।

हम पर मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो के साथ में, और ढेर सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी अभी एक प्यारा सा बर्थडे मैसेज आया है, हैप्पी 11th बर्थडे टू विंशा वैष्णवी चंद ऑफ मनीरेवा, और इनको ढेर सारा प्यार मिला है, लॉट्स ऑफ दुलार एंड किसेस फ्रॉम पापा विनेश, साथ में मम्मी शालिनी, मौसी नलिनी, मौसा एल्विन, नानीज मिसिस कमल एंड मिसिस प्रभा फ्रॉम फीजी से ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। इसके साथ साथ आ जाए नाजी है, मिस्टर एंड मिसेस सुभाष चंद, दादा विमलेश है, दादी सरिता, काकज विशाल, विशांत और साथ में काकीज प्रेमिका नंशिका, भैया है व्योम वायुम और सिस्टर्स श्रेया एंड शानवी, इन सभी की ओर से आपको विंशा ढेर सारा प्यार मिला है। जबकि आज 11th ऑफ जुलाई है, ऐसे में आप अपना 11th बर्थडे आज मना रही हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द टीम ऑफ हम, आपका दिन बिल्कुल स्पेशल रहे यही हम दुआ करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, है ढेर सारा प्यार और उपहार आपको दिन भर मिलती रहे, ये सभी कुछ हमारे साथ में है। इसके अलावा ढेर सारे गुड मॉर्निंग के भी मैसेजेस आए हैं, बारी बारी से आपको शामिल करते चलेंगे। लेकिन अगला जो गीत है हमने एक फिल्म से लिया है, लुटेरा। अगर जो आपने ये फिल्म नहीं चेकआउट किया है तो आप इसे देखिएगा ज़रूर। इसको डायरेक्ट किया था विक्रम आदित्य मोटवानी ने, और रणवीर सिंह की वन ऑफ द एलियस्ट मूवीज जहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने अभिनय किया था, साथ में सोनाक्षी सिन्हा थी। तो इस यही फिल्म से हमने इस गीत को लिया है मोनाली ठाकुर की आवाज़ में।

0: Radio.co.nz.
1: 15 मिनट बाकी है 8 बजने में और इधर जो स्पेन और बेल्जियम के बीच में खेल चल रहा है काफी इंटरेस्टिंग और स्पाइसी है क्योंकि 50th मिनट में फेबियन रुइज ने स्पेन को एक गोल से आगे कर दिया था लेकिन कुछ 11 मिनटों के बाद में चार्ल्स दे केतेलेरे ने 45th मिनट में बेल्जियम के लिए इक्वलाइज कर दिया जबकि फर्स्ट हाफ बिल्कुल समाप्त होने वाला है ऐसे में अभी का जो स्कोर है स्पेन 1 और साथ में बेल्जियम भी 1 तो इंटरेस्टिंग मैच इसके साथ साथ में रोनल ने हमारे पास में मैसेज किया VTNZ टीम बोटनी साथ में ग्लेन इनस से आपने हमको विश किया गुड मॉर्निंग भाई आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग हैव अ वंडरफुल डे अहेड इसके साथ में फोरम आपने भी मैसेज किया है और थैंक यू सो मच फोरम आपका आपके मैसेज के लिए और इसके साथ साथ नितेश आपका भी मैसेज आया था गुड मॉर्निंग अवी हैव अ ब्लेस्ड डे यू आर प्लेइंग नाइस सॉन्ग्स शुक्रिया नितेश और आपको भी हैव अ वंडरफुल डे अहेड इसके साथ में 580449 आपने भी गुड मॉर्निंग लिखा थैंक यू सो मच आपका भी आज का दिन बिल्कुल शुभ रहे एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड जितने भी प्यारे प्यारे मैसेजेस आते रहेंगे आपके साथ में शेयर करते रहेंगे आप भी कुछ स्पेशल ओकेजन आज मार्क कर रहे हैं आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है चलो हमने इसी बहाने आपको याद भी दिला दिया काफ़ी लोग भूल जाते हैं वेडिंग एनिवर्सरीज को भूलना तो नहीं चाहिए लेकिन 11 जुलाई है आप भी याद कीजिए क्या कुछ साल पहले आपने भी शादी के बंधन में आज बंधे थे तो ऐसे में आपको याद दिला देते हैं आप भी अपने जो मैसेजेस है 5599 पर हमारे पास में भेज सकते हैं एंड 0800004866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं
2: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
3: Saturday Breakfast on Hum.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: We're planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
5: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर
6: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप वेस्ट साइड है ना वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये I have lots of fun basically with the cold weather.
5: कौन है?
6: हुनुआ और वेटाकरे
5: अच्छा हुनुआ वेस्ट में
6: किधर है हुनुआ
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m.
8: Long weekends are made for saving at Briscoe's with massive 70% off dream big deals plus 20 to 70% off the entire store. Briscoe's is making all your dreams a reality. So hurry in Sunday. See online for T's and C's.
9: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Toast, coffee aur hum ka energy. Saturday breakfast on Hum.
1: That's right, beautiful smile लिए और साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं लिए मैं आ गया हूँ आपके साथ में सैटरडे ब्रेकफास्ट शो करने के लिए अपना जो ब्रेकफास्ट है आज आपके साथ में शेयर करूंगा एक प्यारा से मैसेज आया है क्वीन की ओर से गुड मॉर्निंग अवी वंडरफुल प्रोग्राम एंड लवली सॉन्ग्स प्लेड थैंक यू सो मच आप भी इसी तरह से इंजॉय करते रहिएगा और आगे बढ़ते हुए थोड़ी देर में आपको बताएंगे टेस्ट लोटो के बारे में कि कैसे और किस तरह से लोग न्यूजीलैंड में अपने जो नंबर से चूज करते हैं ये बातें हो रही है जबकि आज $25 million का जो टेस्ट लोटो ड्रॉ है ये होने को है

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: 8 minutes away from 8, ये है हम, मैं हूँ अभी आपके साथ में Saturday Morning Breakfast Show के साथ में, और 8 पर आपके लिए Face News of the Day रहेगा.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: यो मैं हूँ छोटा सा छोरा
0: यू आर लिसनिंग टू अविनीत
3: जी हाँ, पर अभी का साथ है 8:02 हो रहे हैं और हमने आपसे वादा किया था कि आपको टेस्ट लोटो के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। तो कुछ एक रिपोर्ट सामने आई है कि जहां पर बताया गया है कि न्यूजीलैंड प्लेयर्स यहां पर कैसे अपने नंबर्स को पिक करते हैं। तो कुछ लोगों का जो फेवरेट वे ऑफ प्लेइंग टेस्ट लोटो है, ये शायद स्ट्रेट लाइन्स में नंबर्स पिक करते हैं या फिर किसी और पैटर्न या सीक्वेंस में अपना नंबर्स पिक करते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में अक्सर ये अपना डायगनली या फिर किसी और तरह से अपने नंबर्स को पिक करते हैं। लोगों का मानना है कि शायद गुड लक जो है ये स्ट्रेट लाइन में नंबर्स खेलने से या फिर डायगनल पैटर्न में नंबर्स खेलने से तभी शायद इनको जो विनिंग नंबर्स है ये हाथ लग सकता है। इसके अलावा लोग जो है सिम्पसन्स के एपिसोड से भी, टीवी शो से भी विनिंग नंबर्स पिक करते हैं और अपना लक आजमाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अपने अपने जो पर्सनल नंबर्स आप चूज़ करते हैं इसमें ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि दे सीम टू बी द अनकॉमन नंबर्स, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी होती है या फिर किसी और आपके पर्सनल लकी नंबर से जुड़ी होती है, तो इसमें प्राइस शेयरिंग के चांसेस कम होते हैं क्योंकि दे आर यूनिक नंबर्स टू यू। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बताया गया है कि जब भी आप टेस्ट लोटो खेलें इसे किसी इन्वेस्टमेंट की तरह ना देखें। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है जो लक पर डिपेंड करता है, यानी कि इफ़ यू आर लकी इनफ आपको हाथ में जो विनिंग नंबर्स है लग जाएंगे या फिर जो प्राइज़ है $25 million आज लग सकते हैं, लेकिन इसे अपने जरिया लाइवलीहुड का ज़रिया मत बनाएं, ये कहना है। और इसी तरह से बेस्ट ऑफ लक अगर जो आप अपना जो लक आज आजमाएंगे।

0: हम पर सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा को और 104.2 एफएम साथ में रोवा पर हमारी आवाज अब तक आ रही है। अभी तक शायद किसी भी रीजन से आपने रोवा डाउनलोड नहीं किया है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पर ढेर सारे अमेजिंग प्राइजेस रहते हैं जीतने के लिए ऑन रोवा इटसेल्फ, जो कॉम्पिटिशन्स बारी बारी से आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। इसके साथ साथ हम म्यूजिक स्टेशंस, यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास में। हम रिवाइंड, जो अगर जो आप 60s या 70s के गाने सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए खास यहाँ पर स्टो किया गया है। इसके अलावा 80s के जितने भी हिट नगमे हैं 80s ईरा के, यहाँ पर ये भी सुनने को आपको मिलेगा। इसके अलावा फिजी भजन है, जो आप संडे मॉर्निंग अगर जो सुनना पसंद करते हैं तो फिजी भजन का प्लेटफॉर्म भी है आपके लिए। इसके अलावा पंजाबी हिट्स, चढ़दी कला, फॉर ऑल योर पंपिंग पंजाबी हिट्स, ये आप सुन सकते हैं। और साथ में फिजी कीर्तन संग्रह, जो फिजी कीर्तन आर्टिस्ट जो प्रमुख कलाकार हैं, इनकी आवाज़ों में यहाँ पर फिजी कीर्तन्स को भी स्टोर किया गया है। साथ साथ राहत फ़तेह अली खान, इनके भी अलग कलेक्शन है, सूफी है, कवालियाँ हैं। हम जानते हैं काफ़ी लोग सुनना पसंद करते हैं राहत फ़तेह अली खान को, तो आपके लिए खास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये सभी कुछ आपके लिए है हम म्यूज़िक स्टेशन पर, जो रोवा पर है। तो इसी तरह से आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जाकर पूरा का पूरा जो एंटरटेनमेंट पैकेज है आपके लिए अवेलेबल है।
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम

0: you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: हाँ पर सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो का कारोबार चल रहा है और जो मैच स्पेन और बेल्जियम के बीच में हो रहा है इसमें कुछ 55 मिनट्स का खेल हो चुका है. अभी भी दोनों टीमें 1-1 से बराबर ठहरी है.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: That's right, Saturday Breakfast Show on Hum. Avi ka saath hai, saath mein haathon mein freshly brewed coffee hai, jiska aroma hi alag hai. Aur garba ki baat kare to garbe ki alag ek maza hoti hai, jo garbe ki raat hoti hai. To isi maza ko aapko dilane ke liye Raj Gadvi aa rahe hain garba night lekar. Inhe la rahe hain, present kar rahe hain Lotus Productions, saath mein Shree Event New Zealand, Vinay Mehta aur Pranchi Group aapke liye lekar aa rahe hain garba with Raj Gadvi live in Auckland, jo rahega Saturday 1st of August को. और ये रहेगा महात्मा गांधी सेंटर पर. अगर जो आपको टिकट चाहिए इवेंट्स टिकट्स न्यूजीलैंड, और यहाँ पर जाकर eventstickets.co.nz पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं. और इन्फॉर्मेशन के लिए स्वप्निल को 022-439-4736 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप लेकर आ रहे हैं गरबा नाइट विद राज गढ़वी.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: That's right, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और यहाँ पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, आपका साथ दे रहा हूँ टिल 12. आपको बता दे, राहत फतेह अली खान द सुरीले मास्टर और ऐसे कवालियों को गाते हैं अपने सुरीले अंदाज में और साथ में टाइमलेस हिट्स को लेकर आते हैं. जब भी गाते हैं पावरफुली गाते हैं और इनके ढेर सारे फैंस हैं ग्लोबली और आपको इनको लाइव देखने का मौका रहेगा एट द ट्रस्ट अरीना ओकलैंड ऑन द 25th of July. तो यहाँ से सिर्फ 2 weeks बाकी है आज से, तो आपके पास में अभी भी मौका है. जबकि जे के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन इनको ला रहे हैं. अभी तक आपने टिकट्स नहीं लिया है तो www.drytickets.com पर राहत फतेह अली खान का जो शो है इसे आप कैच करने के लिए टिकट्स ले सकते हैं.

104.2 FM साथ में रोवा पर मैं हूँ अभी आपके साथ में। 9 से आपके लिए रहेगा मस्ती मीटर, जहाँ पर आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ कॉमेडी की दुनिया से आपको सुनवाएंगे। अभी तो 8:30 बजे हैं, तो 9 बजे आपके लिए लेकर आएंगे मस्ती मीटर।

हम पर आपकी रिक्वेस्ट हमारे सर आंखों पर है, और हमारे पास में ध्रुव ने मैसेज किया है अपने नमस्ते लंदन से ये गाना सुनना चाहे, तो चलो ध्रुव आपके लिए खास ये गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

0: कॉफी और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: 80s के रेट्रो गाने

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
4: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats? Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
5: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ, अच्छा?
5: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
6: Mrs. Singh.
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
9: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
10: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
11: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
12: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
13: Of Bollywood.
14: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
13: Hum. Saturday breakfast on Hum.
15: That's right, yeah, Saturday morning breakfast show और अश्विन प्रोग्राम को सुन रहे हैं ओकलैंड में थैंक यू सो मच शुक्रिया दोस्त शामिल होने के लिए आपको भी याद करते चलते हैं और जहां तक वर्ल्ड कप सोका का सवाल है तो अभी तक बेल्जियम और स्पेन के बीच में कुछ 86 मिनट्स ऑफ गेम हो चुका है दोनों टीमें अभी भी 1-0 से बराबर है इसके अलावा अगर जो बातें करें रग्बी की तो वन नेशंस चैम्पियनशिप ये जो कंपटीशन है इसके तहत आज 5:10 PM पर न्यूजीलैंड और इटली के बीच में खेल रहेगा और साथ ही साथ में 7:40 PM टुनाइट ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में ब्रिस्बन में खेल होगा इसके साथ साथ आज रात को 10:10 PM जापान और आयरलैंड के बीच में खेल रहेगा और वहीं सुबह सुबह संडे मॉर्निंग जस्ट आफ्टर मिडनाइट टुनाइट 1:10 AM इन द मॉर्निंग फिजी और इंग्लैंड के बीच में एक जबरदस्त खेल रहेगा

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सरडे ब्रेकफास्ट शो में आपको याद दिला दे गरबा नाइट विद राज गढ़वी ये आ रहे हैं। जी हाँ, राज गढ़वी ओकलैंड आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। इनको ला रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता, प्रांशी ग्रुप, और आप इनको देख सकेंगे द महात्मा गांधी सेंटर में ऑन द 1st of August। याद रहे, लेस देन अ मंथ ही बाकी है, जबकि आज 11 जुलाई है। तो ऐसे में अपने टिकट्स के लिए, अगर जो आप गरबा नाइट को इन्जॉय करना चाहते हैं, तो अपने टिकट्स के लिए आप जाइए events tickets.co.nz, और या फिर और इन्फॉर्मेशन के लिए स्वप्निल को 0224394736 पर आप कॉल भी कर सकते हैं।

Karan, where are you taking me? My God.

0: Saturday breakfast on Hum. Masti meter on Hum.
1: Yo, chuta sa chhora.
0: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, अभी के साथ है और 9 बज रहे हैं हमारे स्टूडियोज में. सो वी आर हाफ वे थ्रू द शो और ऐसे में सबसे पहला पहल आपको इस हवा पर बता दे कि जो स्पेन और बेल्जियम के बीच में खेल हो रहा था, इसमें स्पेन की जीत बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से हो गई है और स्पेन हैज़ नाउ क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स. जो खेल 1-1 से बराबर थी काफ़ी देर तक और एक सुपर सब है मिकेल मरिनो. अगर जो फुटबॉल फॉलो करते हैं तो जो राउंड ऑफ 16 का मैच था जहां स्पेन और पोर्चुगल एक दूसरे का सामना कर रही थी, उस गेम में भी मिकेल मरिनो ने आकर गोल बनाया था और उन्हीं के गोल के कारण स्पेन की जीत हुई थी वहाँ. लेकिन आज ऐसा ही कमाल फिर मिकेल मरिनो ने कर दिखाया, जबकि 85th मिनट में उनको भेजा गया फील्ड पर. 88th मिनट में, यानी कि जस्ट आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ बींग ऑन द फील्ड, उन्होंने गोल बनाकर स्पेन को 2-1 से आगे कर दिया था. अब तो ये खेल समाप्त हो चुका है. स्पेन हैज़ नाउ क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स और बेल्जियम वापस टूर्नामेंट से बेल्जियम ही जाएगी. तो ये सभी कुछ है हमारे साथ में जो अपडेट्स है हमारे काइंड स्पॉन्सर्स की ओर से.
3: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: हम पर यह है मस्ती मीठा का प्रोग्राम 9 से 10 बजे तक रहता है और मस्ती मीठा का मेन मोटिव जो है ये रहता है कि हफ्ते भर की थकान के बाद में परेशानी के बाद में आप थोड़ा हंस ले और हंसकर अपने जो स्ट्रेस है इसे दूर कर सके और वीकेंड को आप इंजॉय कर सके। तो चलो हंसते हंसाते आपको ये सुनवाते हैं। आपको ये क्लिप सुनना है और सिर्फ ये बताना है कि कौन करेक्टर है जो सिर्फ अपने अंदाज में बताते हैं कि वो कहाँ तक पढ़े हैं। तो जो जहाँ तक पढ़े हैं उस करेक्टर का हमको नाम चाहिए। तो ये सुनिएगा और उसके बाद में 5599 पर आप हमारे पास में जवाब दीजिएगा।
1: तक पढ़े हो तुम?
2: 10 बजे तक।
1: 10 बजे तक?
2: 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि 1 घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ।
0: तो कौन है ये भाई साहब जो सिर्फ 10 बजे तक पढ़े हैं और 9 बजे स्कूल गए और 10 बजे इनको इनके प्रिंसिपल को पता लग गया कि इनका कुछ होने वाला नहीं है। एक बार फिर सुनिए।
1: कहाँ तक पढ़े हो तुम?
2: 10 बजे तक।
1: 10 बजे तक?
2: 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि 1 घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ।
0: तो आपको यही पहचानना है कि कौन सा ये करेक्टर है जो सिर्फ 10 बजे तक पढ़ा है। अपने जवाब को 5599 पर ज़रूर भेजिए अपने नाम के साथ में और उसी मैसेज में अगर जो कुछ और भी आप सुनना चाहते हैं, कोई गाने की फरमाइश है, वो भी हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं 5599।

0: यह है मस्ती मीटा ऑन हम, और जो क्लिप हमने आपको सुनवाया था शायद आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो चलो क्लू के तौर पे आपको ये बता दें, ये जो फिल्म है जिस फिल्म से हमने इस करेक्टर को लिया है, ये फिल्म जो फ्रेंचाइज है ये अभी सिनेमास में चल रही है। और अगर जो आपको करेक्टर का नाम नहीं मालूम है तो आप उस एक्टर का नाम हमारे पास में भेज सकते हैं, और चलो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं ताकि आप सही तरह से अंदाज़ा लगा सकें।
1: कहां तक पढ़े हो तुम?
2: 10 बजे तक।
1: 10 बजे तक?
2: 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि 1 घंटा में कुछ पढ़ सकता हूं।
0: तो अगर जो आपको पता लग गया है 5599 पर आप भेज सकते हैं, ये जो फिल्म है अभी सिनेमाज में चल रही है।
3: मस्ती मीटर ऑन हम।
4: डीजे वाले भाई साहब लगा दो कोई डुबचिक डुबचिक।

0: की पार्टी खत्म, चलो।
1: नहीं, पार्टी अभी नहीं खत्म हुई क्योंकि 12 तक हम आपके साथ में रहेंगे। और जो एक्टर ने इस डायलॉग को बोला है जो हमने आपको सुनवाया था, चलो दो ही जवाब आए हैं अभी तक। एक तो पल्वी आपने हमारे पास में मैसेज किया है अपने जवाब को, साथ में सलेश ने भी सही जवाब भेजा है और काफ़ी लोगों को शायद मुश्किल हो रही है। तो आपको चलो क्लूज में थोड़ा और बताते हैं। इनके जो एक्टर हैं ये ही इज़ रिनाउंड फॉर डेंसिंग एज वेल, एक डेंसिंग शो भी लेकर ये आते थे। और एक बार फिर से शायद ये जो शो है, डेंस शो लेकर आ रहे हैं, होस्ट करते हैं। और इसके अलावा इसके जो डेट थे ये भी एक अच्छे कलाकार थे, एक्टर थे और कॉमेडियन थे। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रोल्स जो इस एक्टर के डेड ने प्ले किया था वो था सुरमा भोपाली फ्रॉम शोले। और अभी हाल में इनके बेटे भी एक्ट कर रहे हैं और इनके बेटे का नाम है मिजान। और साथ में इन्होंने साथ में दे दे प्यार दे 2 में काम किया था मेरे ख्याल से। तो चलो एक बार फिर ये आखिरी मौका है आपके पास में, इसे सुन लें। और अगर जो आपको जवाब पता लगता है तो 5599 पर हमारे पास में ज़रूर टेक्स्ट करें।
2: कहाँ तक पढ़े हो तुम?
3: 10 बजे तक।
2: 10 बजे तक?
3: 9 बजे स्कूल शुरू हुआ, जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि 1 घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ।
1: तो इन्होंने अपना डेब्यू किया था सुभाष घाई की एक फिल्म से और विलन की तरह। और इनका जो फिल्म है, जिस फिल्म से हमने इस डायलॉग को लिया है, ये एक फ्रेंचाइज मूवी है जो अभी सिनेमाज में चल रही है। 5599 पर अपना जवाब हमारे पास में भेज सकते हैं। मस्ती मीठा है ये, इसी तरह से मस्ती भरे बातों को हम करते रहेंगे और कुछ और भी आपको सुनवाएंगे।
4: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: सरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम और मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है मस्ती मीटर जो कि 10 बजे तक रहेगा और आपको बता दें ये जो आवाज़ हम आपको सुनवा रहे थे जो डायलॉग सुनवा रहे थे ये नन अदर देन जावेद जेफरी की थी द मल्टी टैलेंटेड जो एक बेहतरीन डांसर एक्टर और साथ में कॉमेडियन भी है और इस डायलॉग को लिया था फ्रेंचाइज धमाल से जहाँ पर इन्होंने बेखूबी रोल निभाया है मानव श्रीवास्तव का और एक बार फिर जबकि ये फिल्म सिनेमाज में चल रही है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं जवाब दिया है शैलेश ने क्राइस्टचर्च से थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं हमें क्राइस्टचर्च से रोवा पर और वेलकम टू द शो इसके साथ साथ पल्लवी भी है आपने भी जवाब भेजा इसके साथ 0003 जी हाँ आपका भी जवाब आया थैंक यू शुक्रिया आपको और शैलेश आपने भी जवाब भेजा था आप सभी ने सही पहचाना ये जावेद जेफरी की ही आवाज़ थी

जबकि बातें हो रही हैं मस्ती की और साथ में कॉमेडी की और लाफ्टर की, तो आपको बता दे ट्राई विजन इवेंट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जिसमें आप देख सकेंगे कृष्णा अभिषेक साथ में राजीव ठाकुर को लाइव ऑन स्टेज। आपने इनको इनके कारनामों के साथ में ऑन स्क्रीन टीवी पर देखा है, लेकिन अब समय हुआ कि जहां पर आप इनको स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते हुए देख सकेंगे। एक ऐसा नाइट जहां पर लाफ्टर नॉन स्टॉप रहेगा। तो ये सभी कुछ रहेगा नेक्स्ट वीक सैटरडे को। याद रहे एक ही सप्ताह बाकी है, जबकि अगले शनिवार को ये परफॉर्म करने वाले हैं हमारे ओकलैंड के विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर। 18 जुलाई को इनका परफॉर्मेंस रहेगा, जहां पर वीआईपी टिकट्स तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप मन बना रहे हैं जाने के लिए तो bookmyevent.co.nz पर जाकर जरूर टिकट्स खरीदिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा वसूल नाइट रहेगा, जबकि ये आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है। इसके साथ साथ आपको वीकडेज 0800004866 पर एक मौका लगता है जहां पर आप डबल पास भी जीत सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे जो आरजेज है अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज में आपको एक फ्रेंडली एयर फ्रेंडली जोक बताने का मौका देते हैं। हाँ, याद रहे भाई कि एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे जोक्स। और अगर जो आपके जोक बताने पर हमारे आरजे हंस पड़े तो आपको मिल जाएगा डबल पास। तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है। और वैसे bookmyevent.co.nz पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं, क्योंकि ट्राई विजन इवेंट्स लेकर आए हैं द ग्रेट कॉमेडी नाइट विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर।

0: 104.2 FM साथ में रोवा पर आप सुन रहे सैटरडे ब्रेकफास्ट शो अभी का साथ है, जबकि 20 मिनट बाकी है 10 बजने में। 10 पर यानी कि 10 AM पर आपके लिए लेकर आएंगे जुगाड़ जंक्शन।
1: लाइफ में थोड़ी मस्ती जरूरी है, मस्त

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Long weekends are made for saving at Briscoe's with massive 70% off dream big deals plus 20 to 70% off the entire store. Briscoe's is making all your dreams a reality. So hurry in Sunday. See online for T's and C's.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
4: Grab a hot deal for less with Mitre 10. Refresh your space with 4 litres of selected Accent interior paint, now $79. And cozy up your home with 20% off Goldia panel heaters. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
5: Bollywood ka asli blockbuster.
6: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
5: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Masti Meter.
7: That's right, ये है मस्ती मीठा। और आपको लगे हाथ बता दें, कल सुबह इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में जो एक और एक क्वार्टर फाइनल है इसका मैच रहेगा और काफ़ी लोगों को इसका बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन मस्ती मीठा को आगे बढ़ाते हुए अगली बार जो क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है और जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों में से कितने लोगों को आप में से कितने लोगों को पता होगा कि किस आर्टिस्ट ने इस एक्ट को किया है। तो चलो सुनवाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको। और अगर जो आपको पता है कि किस आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है, इस किट को कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जवाब आप हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम ये सुनिए और इन्जॉय कीजिए।
8: मैंने देखा दो बुजुर्ग लोग आपस में ताली दे देकर के बहुत जोर से हंस रहे थे, वहां पर काफी भीड़ भाड़ लग गई। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हैं, तो एक ने बोला कि ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं हमारे पास देश की हर समस्या का हल है। तुमने कहा इसमें हंसने की क्या बात है भाई, बुजुर्ग आदमी से पूछ लेते हैं क्या हल है। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या हल है, बोले देखो एक ही हल है, देश की जितनी भी जनता है ना सबको उठा के जेल में डाल दो और जेल के अंदर एक गधे को भी बंद कर दो। गधे को क्यों, तो फिर वो ताली दे के हंसने लगे, कहने लगे देखा मैंने कहा था ना जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा, सब गधे के बारे में पूछेंगे।
7: हाँ, तो ये एक ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट जहां पर कॉमेडी की बात करते हुए कुछ कुछ आर्टिस्ट की टैलेंट होती है कि वो हंसते हंसते काफी इंटरेस्टिंग बातों को, पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर जो आपको पता था कि ये कौन आर्टिस्ट है, 5599 पर जरूर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा।

0: आर्ट की।
1: हाँ, तो जिस आर्टिस्ट को हमने आपको मस्ती मीठा में सुनवाया था अभी, उनका नाम है राजीव निगम। हमारे पास में मैसेज आया था राजू श्रीवास्तव, लेकिन नहीं, ये है राजीव निगम। ये कानपुर के रहने वाले हैं और स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि राजीव निगम ने सक्सेसफुल कॉमेडी शोज जैसे मूवर्स एंड शेकर्स, साथ में कैरी ऑन शेकर जैसे जो शोज़ है, इनको इन्होंने लिखा है। और उसके बाद में फिर जाकर इन्होंने ट्राई भी किया एक्टिंग में। अगर जो आपको पता होगा, एक सीरीज़ आई थी, एक पॉलिटिकल सटाया, हर शाख पर उल्लू बैठा है। अगर जो आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर ज़रूर ढूंढिएगा। उस शो में इन्होंने एक्ट किया है और शायद मेरे ख्याल से उस शो को इन्होंने लिखा भी है। तो आज के लिए जो इन्फॉर्मेशन, साथ में जो कॉमेडी का एलिमेंट था, सेगमेंट 9 से लेकर 10 तक मस्ती मीठा में, अब तो ये समाप्त हो चुका।
2: टोस्ट, कॉफी और हम का एनर्जी।
3: सुबह हो गई मामू।
2: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम।

0: मीटर ऑन हम।
1: इस वीक के लिए मस्ती मीटा बस यहीं तक था और 10 पर आपके लिए लेकर आएंगे जुगाड़ जंक्शन, जहां पर लाइफ से कुछ ना कुछ हेक्स जो होती है जो आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे दे और साथ में आपका लाइफ थोड़ा और इजी कर दे। ये सभी कुछ बातें रहेंगी आफ्टर 10, और 10 पर आपके पास आपके साथ में न्यूज़ भी रहेगी।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcasts.

0: Saturday breakfast on Hum.
1: Saturday breakfast mein hum aaye hain Jugaad Junction par.
2: Yo, main hoon chhota sa chhora.
1: You're listening to Avineet.
3: आप भी अपने सैटरडे मॉर्निंग का कॉफी या टी का मजा ले रहे हैं तो आपका खास स्वागत करते हैं सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में. 10 बज रहे हैं, ऐसे में 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. और इस आवर पर, इस सेगमेंट में जो कहलाता है जुगाड़ जंक्शन, जहां पर आपके साथ में कुछ ना कुछ लाइफ हैक्स शेयर करते रहते हैं, ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा. 104.2 FM साथ में रोवा ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका खास स्वागत करते हैं. एंड स्टे ट्यून्ड, आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने प्लान्स को घर पर रिवाइव कर सकते हैं. ये सभी कुछ जुगाड़ जंक्शन में.

हम पर यह है जुगाड़ जंक्शन ओनली ऑन 104.2 एफएम, साथ में रोवाय पर आप हमें सुन रहे हैं। जबकि जुगाड़ जंक्शन में अक्सर आपको कुछ ना कुछ टिप्स और लाइफ हैक्स देते रहते हैं। आपके बिजी स्केड्यूल में अक्सर आपके घर पर जो पॉट प्लांट्स होते हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप इतना बिजी रहते हैं, काम पर रहते हैं और फिर काम से आते हैं, यू हैव अदर सोशल एक्टिविटीज़ टू डू, उसके साथ ही साथ में घर में भी काफ़ी बिजी होते हैं बच्चों के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लांट्स हैं निग्लेक्ट हो ही जाते हैं। ऐसे में आपके घर में कोई छोटा सा पॉट प्लांट है जो जिसे आप बचाना चाहते हैं, आपने नोटिस किया है कि अब ये इट्स अ डाइंग प्लांट, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उनको कैसे आप एक बार फिर से बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर जो आप नोटिस करते हैं कुछ येलो या फिर मोल्डी लीव्स है, तो आपको उसके रिकवरी पर फोकस करना पड़ेगा। ये पहला इंडिकेशन है कि आपका जो प्लांट है ये अब मरने लगा है, क्योंकि इसके जो लीव्स है ये येलो या मोल्डी हो चुके हैं, ये पहला इंडिकेशन है। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, कुछ न्यूट्रिशनली आपको उसको न्यूट्रिशंस देने पड़ेंगे, उस न्यूट्रिशंस के साथ में आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो एक हल्का सा एक तरीका है जहाँ पर आप अपने पॉट प्लांट को जेंटली उसे जड़ के साथ में आप पुल करें प्लांट से, और ऐसे बाहर के वॉशटब में या फिर आप उसको कहीं जाकर उसके जड़ों को हल्का हल्का ब्रश से आप डस्ट करें, ताकि जितने पुराने सोइल है ये आप रिमूव कर सके रूट्स में से। उसके साथ में एक सीजर्स यूज़ करके जितने रूट्स है, अगर जो ब्लैक हो गए हैं, स्लाइमी हो गए हैं, या फिर आपको देखने में लगेंगे कि ये अधमरे जैसे हैं, होलो है, तो आप उनको हल्का हल्का सा ट्रिम करें। इसके बाद में आप उस पेड़ को थोड़ा उसके जड़ों को थोड़ी देर के लिए आप सोक करें एक माइल्ड सॉल्यूशन में, जहां पर वाटर के साथ में 500 मिल्स ऑफ वाटर के साथ में आप मिलाएं एक टेबलस्पून लेमन जूस, और उस सॉल्यूशन में आप उस प्लांट को थोड़ी देर के लिए सोक करें। और अगर जो आप चाहते हैं इसी समय, अगर जो आप सोइल को रिप्लेस करना चाहते हैं उस पॉट में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो याद रहे, पहला इंडिकेशन अगर जो आपके लीव्स मोल्डी हो चुके हैं या फिर येलोविश हो चुके हैं, तो आपको इंडिकेट करेगा कि ये अब एक डाइंग प्लांट है। और अगर जो छोटा सा पॉट प्लांट है आप खुद ही ट्राई करना चाहते हैं, तो उसे जेंटली पुल आउट कीजिएगा पॉट प्लांट में से, और उनकी जड़ों में से जो सोइल है हल्के हाथों से आप उसे ब्रश आउट करें, और साथ ही में जो रूट्स हैं, अगर जो किसी तरह से आपको इंडिकेशन मिलता है कि ये रूट्स ब्लैक हो गए हैं या फिर स्लाइमी हो गए हैं, तो आप उनको हल्का हल्का सा आप उनको ट्रिम कर सकते हैं। और उसके बाद में आप एक ऐसे सॉल्यूशन में उसको सोक कर सकते हैं उन जड़ों के साथ में जो 500 मिल्स ऑफ वाटर है, और उसके साथ में एक टेबलस्पून लेमन जूस मिलाकर रखे, लेमन का जो रस है ये मिलाकर रखे, और उसके बाद में आपका जो प्लांट है पॉट प्लांट एक बार फिर ये रिवाइव करने लगेगा, आप उसको बूस्ट कर देंगे। तो ये छोटा सा एक तरीका जो आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जो कुछ पॉट प्लांट से आपने अपने घर को इंटीरियर को सजाया है लेकिन आपको लगता है कि इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ वर्क, तो आप ये खुद घर पर कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताएंगे कि कैसे और आप अपने पॉट प्लांट्स का ख्याल रख सकते हैं।

0: आप सुन रहे जुगाड़ जंक्शन विद अवि और ये है हम 104.2 FM प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। जबकि जुगाड़ जंक्शन में आज बातें हो रही है खासकर पोर्ट प्लांट्स के बारे में, तो अगर जो आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने प्लांट को बूस्ट करने के लिए न्यूट्रंस बना सकते हैं घर पर, तो एक काफ़ी आसान तरीका है जिसे कहते हैं बनाना पील आइडिया। और इसको लेकर आप एक घर पर ही एक ऐसा सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं जिससे आपके प्लांट्स को वो रिच लिक्विड बूस्ट प्राप्त होगा। तो क्या करें अगर जो आपके घर पर केले हैं, कुछ छिलकों को लेकर आप 3 से 4 छिलकों को लेकर आप उन्हें सिर्फ पानी में भिगो कर रखें 24 to 36 hours। उसके बाद में ये जो लिक्विड है एक पोटेशियम रिच लिक्विड हो जाएगा और उसी सॉल्यूशन को आप यूज़ करके अपने प्लांट्स को, पॉट प्लांट्स को आप वाटर कर सकते हैं। तो इतने आसान तरीके हैं जहाँ पर घर पर आप खुद बिना कुछ खास पैसे खर्चे किए, बगैर खर्चे किए अपने प्लांट्स को आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। अगर जो आपके पास में भी कुछ आइडियाज़ है, टिप्स है जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो 5599 पर आप ज़रूर लिखें। हम जानते हैं काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं हमारे बीच में जो घर पर खुद प्लांटिंग फ्लावर्स प्लांट करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं या फिर पॉट प्लांट्स लगाते हैं, तो आपके पास में कुछ टिप्स होगा जो एक डाइंग प्लांट को रिवाइव कर सकती है। तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में भेजें ताकि और लिसनर्स भी इससे बेनिफिट कर सकें।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Farmers Long Weekend Sale is now on with 30 to 50% off kitchen, dining, bedding and towels. Up to 50% off furniture plus super deals and half price Sleepyhead beds. Farmers Long Weekend Sale now.

0: Heineken 15-pack bottles, $32.99. And Export 33, 24-pack bottles, $44.99. Plus, join the Mates Club for even bigger exclusive deals.
1: Big Barrel, big range, bigger deals.
2: Big Barrel, you don't come to your store.
3: आपके सामने एक रेड बटन है
4: दबा दिया
3: नहीं दबाना
5: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
5: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
5: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमास नाउ
8: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
9: Trade Depot celebrates Matariki this week with two exceptional deals. Huge Vogue side-by-side fridge freezers, just $5.99. 7-star heat pump dryers, just $4.99. Shop online or in-store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
10: TradeDepot.co.nz.
11: Parents, I see you. You need to make a quick pop to the shops? Then boom! One kid has a last minute birthday invite, another kid has gum in their hair, and you've got work calls up the wazoo. That quick trip to the shops? Not happening. Don't go out. Tap in. Get prezzies, cards and hair stuff from the warehouse, and dinner from your local, delivered to your door with DoorDash. Now that's a good call.
12: Dash!
13: Hollywood's biggest hits.
14: Put your head to Gandhi.
15: Saturday breakfast me. Hum aaye hain Jugaad Junction par.
16: जी हाँ, ये है जुगाड़ जंक्शन और श्रुति प्रोग्राम को सुन रही है. वंडरफुल पॉट प्लांट टिप्स, थैंक यू श्रुति. और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा, 12 तक हम आपके साथ में रहेंगे जबकि सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो है. ऐसे में इस सेगमेंट को कहते हैं जुगाड़ जंक्शन, जहाँ पर आपके लिए वंडरफुल छोटे छोटे टिप्स लेकर आते हैं, जहाँ आप अपने घर पर खुद इसे यूज़ करके और कुछ पैसे भी बचा सकते हैं, वक्त भी बचा सकते हैं. तो अगर जो आपके पास में कोई टिप्स है, जहाँ पर आज खास हम बात कर रहे हैं हाउ टू रिवाइव पॉट प्लांट्स, तो आप हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर, या फिर कॉल भी करना चाहते हैं 0800004866 पर. आपको मौका भी देंगे ताकि आप भी अपना जो टिप्स है हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं.

आप सुन रहे हैं हम, और अभी कुछ 25 मिनट्स बाकी है 11 बजने में, और 11 बजे से आपके लिए रहेगा देसी बिज शाउट आउट, जहां पर आपको मौका दिया जाएगा आप अपने होम बेस्ड बिजनेसेस को प्रमोट कर सकेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं पिछले कई वीक्स और महीनों से। तो एक बार फिर आपको मौका दिया जाएगा, अगर जो आप घर से कोई बिजनेस रन करते हैं जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं ताकि और लोग भी आपके बिजनेस के बारे में जाने, आपके वेंचर के बारे में जाने, तो ये मौका आपके पास में रहेगा, जहां पर आप 5599 पर अपने बिजनेस को बिजनेस के बारे में टेक्स्ट करके अपने नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, साथ में क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, ये सभी कुछ भेजकर आप प्रमोशन कर सकेंगे विद न्यूजीलैंड्स नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन। ये सभी कुछ स्ट्रेट आफ्टर 11।

0: मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है जुगाड़ जंक्शन ऑन हम योर फेवरेट बॉलीवुड स्टेशन 104.2 एफएम साथ में रोवा पर 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। जबकि बातें हो रही थी पॉट प्लांट्स के बारे में तो एक प्यारा सा टेक्स्ट आया है, ओवर वाटरिंग इज अ प्रॉब्लम टू फॉर प्लांट्स, यानी कि आप ज़्यादा मात्रा में अगर जो प्लांट को वोटा देते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है ना कि किसी भी मात्रा में या अगर जो किसी भी चीज़ को आप हद से ज़्यादा करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो इस पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कितने वॉल्यूम में आप प्लांट को वोटा करते हैं। ये सारी बातें आपके साथ में चलती रहेंगी हम पर।
1: Start your Saturday fresh with the perfect mix.
2: Saturday breakfast on Hum.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा, Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoras, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: वो Indelible Homes वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: HBO Max is the all-killer, no-filler.
11: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
10: Exactly.
11: Right, we'll see. What are they called?
10: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
11: Whoa, okay, I get it. Fair call.
10: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
12: Farmer's long weekend sale is now on with 10% off fragrance and selected beauty, up to 40% off women's, men's and kids' clothing, plus up to 40% off lingerie and men's underwear. Farmer's long weekend sale now on. Conditions and exclusions apply.
13: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
14: Please use your imagination for the following ad.
15: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
14: Imagine winning $25 million this Saturday. Play in store or online.
16: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Treat the family with 7 nights plus flights from $1,399 per person. Book online or in-store today. Departs open, fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
0: जुगाड़ जंक्शन में आज स्पेशल प्लांट्स, पॉट प्लांट्स के बारे में बातें हो रही हैं। और जो फाइनल टिप है इस वीक का, अगर जो आपके पास में घर पर पॉट प्लांट्स है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसको लुक आफ्टर करें, तो काफ़ी फ्री एप्स भी है अवेलेबल जहां पर आप प्लांट्स के फोटोग्राफ्स लेकर उस ऐप को यूज़ करते हैं। तो वही ऐप आपको प्लांट को आइडेंटिफाई करके और उसका जो प्रॉब्लम है ये डायग्नोसिस भी आपके लिए कर देता है और साथ ही साथ में सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर देता है। ऑल विद इन योर पाम, यानी कि आप अपने हाथ में मोबाइल पर ही अपने प्लांट का जो प्रॉब्लम है इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ में उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ अगर जो आप चाहते हैं, लुक अराउंड ऑन योर ऐप स्टोर, वहाँ पर काफ़ी जगह पर फ्री प्लांट केयर करके ऐसा कई ऐप्स है जो आपको हेल्प कर सकती हैं।

हम पर आज के लिए जुगाड़ जंक्शन में बस इतना ही, और 11 बजे के बाद में आपके लिए लेकर आएंगे देसी बिज शाउट आउट। आप अगर जो चाहें तो अभी से हमारे पास में अपने बिजनेस डिटेल्स 5599 पर भेज सकते हैं।

0: You're listening to Avineet.
1: हमारे स्टूडियोज में ठीक 11 बज रहे हैं और अभी का साथ है दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो, जबकि सबसे खूबसूरत सेगमेंट मैं कहूँगा मेरे लिए इंटरेस्टिंग यह है क्योंकि यहाँ पर एक मौका दिया जाता है आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो अगर जो आपको इस मौके से फ़ायदा उठाना है जहाँ पर रेडियो पर आपके क्लाइंटेल आपके कस्टमर बेस को और बढ़ा सकते हैं सिर्फ अपने बिजनेस के डिटेल्स, खासकर अगर जो होम बेस्ड बिजनेस है, तो 5599 पर आप टेक्स्ट करके हमारे पास में अपने बिजनेस के बारे में और लोगों तक पहुँचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि लोग आपके सर्विसेज को यूज़ कर सकें। विकास ये टी शर्ट प्रिंटिंग करते हैं, साथ में वोक वेयर, अगर जो आपके यूनिफॉर्म्स पर आपको लोगो चाहिए या फिर कंपनी का नाम चाहिए या फिर कोई स्पोर्ट्स वेयर है आपके पास में, कोई क्लब है या कोई टीम है जिस पर आपको जिसके लिए आपको यूनिफॉर्म्स चाहिए, जेसीस चाहिए, प्रिंटर नंबर्स चाहिए प्रिंटर, तो ये सभी कुछ विकास करते हैं। 02725455468 पर आप विकास को कॉल करें और ये आपके लिए जितने ज़रूरी प्रिंटिंग है टी शर्ट्स पर, साथ में आपके यूनिफॉर्म्स के लिए, ये सभी कुछ विकास आपके लिए कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट कराना है, 5599 पर ये मैसेज हमारे पास में भेजिए, आप किस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और ये सभी कुछ आपके लिए यहाँ करेंगे। दिस इज़ द गोल्डन आवर जहाँ पर आपको ऐसे ही, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको मैक्सिमम मार्केटिंग प्रमोशन दिया जाए। एज आवर लिसनर्स, एज आवर वैल्यूड लिसनर्स, यहाँ पर इस आवर पर आपको हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे।

0: और हम का एनर्जी
1: सुबह हो गई मामू
0: सैटरडे ब्रेकफास्ट ऑन हम
2: जी हाँ, ये सैटरडे ब्रेकफास्ट शो ऑन हम और ये सेगमेंट कहलाता है देसी बिज शाउट आउट, जहाँ पर आपके बिजनेसेस को हम और नया प्रमोट करते हैं। तो अगर जो आपको एस्कोर्टेड ग्रुप टूर्स लेना है, यानी कि काफ़ी लोग हैं जो ट्रेवल या फिर ट्रेवल सोलो करना पसंद नहीं करते हैं, इनको चाहिए कम्फर्ट की एक ग्रुप में ये ट्रेवल कर सके, तो आप सिर्फ अनिल को कॉल करें ऑन सन टूर्स एट सन टूर्स, और यहाँ पर आपके लिए ढेर सारे पैकेजेस है जहाँ पर आप एक ग्रुप के साथ में ट्रेवल कर सकते हैं एट रीजनेबल रेट्स, क्योंकि आप ग्रुप के साथ में होंगे तो डिस्काउंटेड रेट्स भी ये आपको दिलाएंगे। तो अनिल को कॉल करें एट सन टूर्स और ये आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे एस्कोर्टेड ग्रुप टूर्स टू इंडिया, और साथ में कहीं और भी आपको जाना है या फिर किसी और डेस्टिनेशन के लिए आपको टिकट्स चाहिए तो अनिल को ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से आपको भी अपना बिजनेस प्रमोट कराना है तो हमारे पास में आप टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599 और यहाँ से आपको शाउट आउट देते चलेंगे। हीट पम्प सर्विस करवाने हैं आपको, अगर जो विंटर का सीज़न है और आपके हीट पम्प्स अच्छी तरह से चल नहीं रहे हैं, आपको प्रीमियम हीट नहीं दे रही है, तो आपको सिर्फ सर्विसिंग कराना है तो आप कॉल कर सकते हैं मोहम्मद जहीर को। जी हाँ, मोहम्मद जहीर ये आकर आपके लिए हीट पम्प्स ओकलैंड के किसी भी एरिया में आप हो इनको कॉन्टेक्ट करें ऑन 022-080-1817 022-080-1817। काफ़ी चीप डिस्काउंटेड रेट्स पे आपके लिए ये काम कर सकेंगे और अच्छी तरह से ये आपके जो हीट पम्प से सर्विस करके और विद अ फ्रेंडली सर्विस ये आपको छोड़ देंगे, आपके घर पर आकर अटेंड कर लेंगे। ये सभी कुछ है। अगर जो आपके पास में भी कोई बिजनेस है, होम बेस्ड बिजनेस जिसे आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो नंबर आपको मालूम है 5599 पर आप टेक्स्ट कर दीजिए अभी से ही।

देसी बी शॉट आउट है आपके फेवरेट स्टेशन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स में, और यहां से आपको शॉट आउट देते चले हैं। अगर जो आप घर से वेजिटेबल्स बेचते हैं या फिर फ्लावर्स बेचते हैं या फिर आप टेलरिंग का काम घर से करते हैं और आप चाहते हैं कि और लोग आकर आपकी सेवाओं का सर्विसेज का फ़ायदा उठाए, तो 5599 पर आप हमारे पास में जल्द से जल्द टेक्स्ट करें। और इसके साथ साथ में अगर जो आप म्यूज़िक लेसन्स लेते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए, तो उसके लिए भी 5599 इज द नंबर। यहां पर आप कॉल करके अपने जो सर्विसेज है इसे प्रमोट कर सकते हैं। हम जब यहां से आपके बिजनेस के बारे में बताते हैं तो काफी लोग सुन लेते हैं और ओन एयर सुनने के बाद में आपके बिजनेस को ये भी प्रमोट करेंगे, और ऐसे ही जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो करती है और आकर आपके बिजनेस में आपको सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं बाय यूजिंग योर सर्विसेज एंड पेइंग फॉर इट। तो ये सभी कुछ है आपके पास में, मौका गोल्डन आवर है। अगर जो आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं।

0: Comment Butchie.
1: Lovable investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
2: अच्छा तो चलो देसी भी शाउट आउट में आपको बता दे, टेलरिंग सर्विसेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर जो आप एक अच्छा उम्दा टेलर खोज रहे हैं तो फ्लैटबुश में रोशनी है। 0211-325-626 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। आपको ऑल्टरेशंस करवाने हैं, स्टिचिंग करवाने हैं, देखिए ये सब मुझे पता है, ऑल्टरेशंस करवाने हैं, स्टिचिंग करवाने हैं, आप रोशनी को कॉल करें। फ्लैटबुश में ये अवेलेबल है 0211-325-626 0211-325-626। कोई फंक्शन आने वाला है जिसके लिए आपको अपने ब्लाउजेस को ठीक करवाने हैं तो इस नंबर पर आप जब कॉल करेंगे तो रोशनी पूरा का पूरा आपका ध्यान रखेगी। और अगर जो आपके पास में भी कोई बिजनेस है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो 5599 पर अभी ही टेक्स्ट कीजिए हमारे पास में।

0: हम परदेसी बीच शाउट आउट का कारोबार जारी है, और अगर जो आपको टिकट चाहिए ट्रेवल टिकट्स, आप कहीं आपके हॉलीडेज आ रहे हैं और आप आउट ऑफ न्यूजीलैंड ट्रेवल करने वाले हैं, तो फ्लाइट कार्ट एक ऐसी ट्रेवल एजेंसी जहां पर आपको उम्दे दाम भी देती हैं फॉर योर टिकट्स, इसके साथ साथ आपको अच्छा ट्रेवल इंश्योरेंस ऑप्शन भी ये देती है, यानी कि ऑल अंडर वन स्टॉप और वन स्टॉप शॉप है, और साथ में अकोमोडेशन के लिए भी आपको फैसिलिटेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर जो आप क्रूज़ पर जाना चाहते हैं, इसके लिए आप सिर्फ कॉल करें फ्लाइट कार्ट ऑन 02211111034, याद रहे 02211111034 पर आप कॉल करें फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स। और अगर जो आप घर से कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी तरह से आप फूड टिफिन सर्विसेज करते हैं, तो 5599 पर आप टेक्स्ट करें, आपसे भी सुनना चाहेंगे। ये सभी कुछ रहेगा आपके साथ में टिल 12।
1: Saturday breakfast on Hum. वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: Big savings in store this long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants, and save on Water ID Advanced Interior 10 liter. July 9th se 12th tak. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson mein.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: Moisture और ventilation का problem लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
6: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love. The playground down the road. The park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/local board plans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: अच्छा,
9: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: जी हाँ, सैटरडे ब्रेकफास्ट शो और देसी बीज शाउट आउट है. जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था कि अगर जो आपको बिजनेसेस को प्रमोट करना है तो 5599 इज़ द मैजिक नंबर. यहाँ पर आप टेक्स्ट करें और आपके बिजनेस को ऑन एयर प्रमोट करेंगे जहाँ पर देश विदेश में लोग रोवा साथ में 104.2 FM पर आपके बिजनेस के बारे में सुन सकेंगे. मो जहीर ये आप सर्विस करते हैं हीट पंप्स को. अगर जो आपके घर में हीट पंप से सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो मो को आप कॉल करें 0220801817 पर. याद रहे 0220801817 पर आप कॉल करें. मो आकर आपके घर पर वाजिब दाम में आपके जो हीट पंप से इसको सर्विस करके एंड देल बी अप एंड रनिंग अगेन. तो नंबर 0220801817. ओकलैंड में कहीं पर आप हैं, आप इसको मो को ज़रूर कॉल करें. और विंटर के मौसम में जहां पर आपको हीट पंप चलना बिल्कुल ज़रूरी होता है तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा और भी सारे जो मैसेजेस हैं आ रहे हैं और बारी बारी से आपको बताते रहेंगे. खास करके अगर जो आप ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए तो आप भी अपने बिजनेस को बिल्कुल प्रमोट करें ताकि और लोग भी जान सके. जो पेरेंट्स है कंसर्न्ड है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज में ये जो ट्यूशन सर्विसेज है ये अवेलेबल है. 5599 पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा.

इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग की बात हो रही है तो एक्सपर्ट एयर सॉल्यूशंस है आपके पास में एक और एक ऑप्शन जहां पर आप अभी को कॉल कर सकते हैं 0272020951। याद रहे हीट पंप सर्विसिंग या इंस्टॉलेशन के लिए आप अभी को एट एक्सपर्ट एयर सॉल्यूशंस कॉल कर सकते हैं ऑन 0272020951 और ये आकर आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है इनका समाधान निकालेंगे और हीट पंप्स का इंस्टॉलेशन साथ में वेंटिलेशन सिस्टम्स एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस और कई और जगह का भी कोट आपके पास में तो आप अभी को कॉन्टेक्ट करके यू कैन निगोशिएट फर्दर 0272020951 इनका नंबर है फॉर एक्सपर्ट एयर सॉल्यूशंस। इसके साथ साथ अगर जो आप ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए फॉर प्राइवेट ट्यूशंस खासकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए किसी भी लेवल किसी भी ईयर के लिए अगर जो आपको सपोर्ट चाहिए अपने बच्चों के लिए फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स तो यहाँ पर अश्मित को आप कॉल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ओकलैंड एरिया कवर करते हैं। अश्मित को आप कॉल करें 0274215528 0274215528 पर आप अश्मित को कॉल करके उनसे बातें कर सकते हैं टू सीक सपोर्ट फॉर योर चाइल्ड फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। याद रहे स्कूल में अगर जो बच्चे मैथ्स या फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं मैंने भी किया है तो आप अश्मित को कॉल कर सकते हैं ऑन 0274215528 और ये काफ़ी चीप रेट्स ऑफर करते हैं और पूरा का पूरा ओकलैंड ये कवर करते हैं। तो ये हो गई ट्यूशन के लिए थोड़ा सा प्रमोशन और अगर जो आप भी कोई होम बेस्ड बिजनेस है कोई वेंचर है आपके पास में जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो 5599 इज़ द नंबर और यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं।

हम पर यह है देसी बिज शाउट आउट और बबीता ऑल्टरेशंस इन सोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ओकलैंड के वेमाउथ एरिया में और बबीता के पास में आप जा सकते हैं अगर जो फैमिली में कोई शादी आने वाली है अप एंड कमिंग और आपको ब्लाउजेज इत्यादि सभी कुछ ठीक करवाना है अभी से ही प्रिपेयर करवाना है तो बबीता को कॉल करें क्योंकि ये ओकलैंड के वेमाउथ एरिया में है और 02236741112 पर आप इनको कॉल कर सकते हैं और अपने कपड़े आप ठीक ठाक करवा सकते हैं तो बबीता एक नाम जो फ्रेंडली सर्विसेज देती है और साथ में टाइम पर आपके कपड़ों को ठीक कर कर आपके लिए देंगी तो 02236741112 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं

0: तो।
1: कुमार शानू का बहुत ही प्यारा अंदाज आप सुन रहे थे, और देसी बीच शाउट आउट में आपको बता दें एक और एक ग्रैनी फ्लैट अवेलेबल है रेंट करने के लिए फ्लैट बुश में, बिल्कुल ब्रह्मा रिज के पास में वन बेडरूम ग्रैनी फ्लैट है जहां पर सारे बिल्स इंक्लूसिव है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें वाटर साथ में इलेक्ट्रिसिटी ये सभी कुछ इंक्लूसिव है, और स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल है। और ये जो फ्लैट है अवेलेबिलिटी इसकी है फ्रॉम द 13th of July, यानी कि 2-3 दिनों में ये बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी। अभी से आप अगर जो इस फ्लैट को व्यू करना चाहते हैं तो आप कॉल करें आहुति को ऑन 022-429-0020 पर, 022-429-0020 पर आप इनसे कॉल करके बातें कर सकते हैं और व्यूइंग अरेंज कर सकते हैं। अगर जो आपके पास भी कोई फ्लैट है देने के लिए तो आप ज़रूर हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट करें, या फिर कोई होम बेस्ड बिजनेस है जिसके बारे में आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन जानकारी, तो 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट करें। होम बेस्ड ब्यूटी सलून है आपके पास में, कोई ब्यूटी सर्विसेज आप प्रोवाइड करती है, थ्रेडिंग हो या फिर इसी तरह कोई और तरह का आपका ब्यूटी सर्विसेज है, आप शायद आप क्या कहते हैं उसको फिंगर नेल, आप एक्लेरिक पेंटिंग करती हैं फिंगर नेल टिप्स को, तो आप वो भी हमारे पास में 5599 पर बता सकते हैं। जो भी बिजनेस आप करते हो मार्केटिंग का पूरा मौका है, जबकि 12 तक ये जो समय है आपके लिए है, यहाँ से काफ़ी लोग सुनकर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और जो आपके क्लाइंटेल बेस है ये भी बढ़ती रहेगी। तो इसी तरह से हम पर न्यूजीलैंड का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन पर आप अपने बिजनेस के बारे में प्रमोशन कर सकते हैं।
0: देसी बिज शाउट आउट ऑन सैटरडे ब्रेकफास्ट
2: 80s के रेट्रो गाने।

0: Saturday Breakfast on Hum.
1: सैटरडे ब्रेकफास्ट शो का कारवा जारी है और अगर जो आप प्रोफेशनल हैंडीमैन सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, घर पर कुछ मरम्मत कार्य करवानी है, रेनोवेशन है, रिपेयर है, तो आप सेम को कॉल कर सकते हैं। ये रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस है, कोटेशंस देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं और क्वालिटी वर्कमैनशिप का ये वादा करते हैं। कोई काम बहुत छोटा या फिर कोई काम बहुत बड़ा भी नहीं इनके लिए। तो 0221202714 पर आप कॉल कर सकते हैं, 0221202714 पर आप कॉल करके सेम से बातें कर सकते हैं और ये आकर आपके लिए आपके घर पर जो भी आपको करवाना है मेंटेनेंस वर्क, ये आकर देखकर आपको कोटेशन दे सकते हैं। तो याद रहे 0221202714, आप इनको कॉल करें फॉर अ फ्री कोट।

That's right. ये है देसी बिज शाउट आउट और इस वीक के लिए ये आखिरी जो अनाउंसमेंट है फॉर देसी बिज शाउट आउट, जबकि बस हमारा जाने का समय भी हो चला है. लेकिन जाते जाते आपको बता दे, हैप्पी राइड्स फॉर ऑल योर रिलायबल एयरपोर्ट ट्रांसफर्स एंड टूर्स. अगर जो आपको एक राइड चाहिए अपने घर से एयरपोर्ट तक, या फिर एयरपोर्ट से घर जाना है, या फिर कुछ फैमिलीज आ रहे हैं हॉलीडेज के लिए, आपको टूर्स ऑर्गेनाइज करना है, तो ईवा को 021-244-0244 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे, ईवा को ऑन 021-244-0244 पर आप कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर जो आपको अपोल्स्ट्री करवानी है घर पर, किसी फर्नीचर को लेकर, सोफा है, काउचेस है, या फिर गाड़ी की किसी सीट में अपोल्स्ट्री की ज़रूरत है, तो शबीम को कॉन्टेक्ट करें 02268531670226853167 पर. ये वेमाउथ में अवेलेबल है. और अगर जो आपको किसी तरह से जैसे कि हमने कहा है अपोल्स्ट्री करवानी है घर पर, या गाड़ी की किसी सीट को रिपेयर करवाना है, तो 02268531667 पर आप कॉल करें. वेमाउथ ऑकलैंड में शबीम अवेलेबल है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. इसके साथ साथ अगर जो आपको डे केयर की ज़रूरत है मैंग्री ईस्ट में, तो द लेनिंग ग्रोव एजुकेयर सेंटर, यहाँ से 2 to 5 years तक बच्चों को ये अकोमोडेट करते हैं. ये सिचुएटेड है 48 बकलिन रोड में. एनरोल अभी कर रहे हैं, आप नेफ को कॉल कर सकते हैं ऑन 02977928 06. 02977928 06 पर आप नेफ को कॉल करें और डिस्काउंट्स भी ये देंगे, ये इनका वादा रहा. तो अभी के लिए देसी बिज में बस इतना ही. चलो कुछ और गाने सुनते हैं, फिर उसके बाद में आपसे अलविदा लेंगे.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: आज के लिए बस इतना ही और आपसे ये वादा किए जा रहे हैं एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी 12 पर लेकर आएंगे जस्ट चिल। लेकिन अभी के लिए मैं निकलता हूँ। आपने सुबह 6 से हमारा साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। आज का जो दिन है बिल्कुल इन्जॉय कीजिएगा। कीप स्माइलिंग एंड डू टेक केयर। बाय।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.